बाबा आपका चिंटू आ गया। चिंटू बहुत बड़ा हुआ है अब मैं तुझे कंधों पे कैसे बुलाऊं।

चंदन उग्यो हरिये बाग में, खुशी भई वनराय। और बांस उग्यो डर डूंगरे थरक रही वनराय। जहां एक तरफ चंदन के उगने से वन में चारों ओर खुशी और आनंद का माहौल हो गया कि अपनी शीतल छाया के साथ साथ दिव्य सुगंध से पूरे वन को महकाएगा। वहीं दूसरी ओर बांस के उगने से वन में चारों ओर उदासी छा गई कि एक दिन ये नुगरा बांस खुद जलेगा और पूरे वन को जला देगा। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, जिसका डर था वही हुआ, उसी बांस के कारण जंगल में आग लग गई।

लो लागी डावे डूंगरे मिल गई झाड़ो झाड़, और तो पंखेरू सब उड़ गया और हंस लो बैठो डाल। जंगल में चारों तरफ आग बड़ी भयंकर फैल गई, सारे जीव जंतु पशु पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए, पर एक हंस आग की लपटों को चीरता हुआ चंदन की डाली पर बैठ गया। मृत्यु से बिना डरे भाव के साथ अपनी डाली से लिपटा हुआ देख चंदन हंस से बोल पड़ा, कहा, हे हंसराज, मेरी तो जड़ें बड़ी पतालों में गहरी हैं, इसलिए इस आग में जलने को विवश हूं, पर तुम्हें तो भगवान ने पंख दिए हैं, अपने इन पंखों का इस्तेमाल कर और इस जंगल और आग को छोड़कर अपनी जान बचाकर चला जा। पर हंस आंखों में आंसू लेकर बोला, हे चंदन, तेरे फूल खाए, तेरे पत्ते खाए, तेरी डाली डाली खेले, तेरी छाया में अपना जीवन बिताया, और आज इन आग की लपटों को देखकर, आज इस मृत्यु के भय से अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं तो मेरा प्रेम कैसे।

पान पिरोलिया और रम्या डालो डाल, थे तो जड़ो और मैं क्यों उबरा, जीनो है कितना साल। हंस रोता हुआ चंदन से बोला है, चंदन मेरे जीवन पर तेरे बड़े उपकार है, और आज इस आग की लपटों और इस संकट की घड़ी को देखकर मैं अगर तुझे छोड़ के चला जाऊं तो मेरी मित्रता कैसी और मेरा प्रेम कैसा। एक तरफ हंस और चंदन का टूट प्रेम देखकर भगवान की आंखों में आंसू टपक पड़े, और इस प्रेम के लिए भगवान ने उस जंगल में इतनी भयंकर बारिश कर दी कि चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया और आग की लपटें भी बुझ गई। साहेब कबीरदास जी ने कहा,

अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, नफरत को नफरत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकती है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे
3: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
3: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
5: गंगापुर सिटी की धरती।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए सर।
1: सर चौधरी निवेदन कर रहा हूँ, सुनवाल
0: चौधरी जी। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर?
1: गाना तो सर सुपर हिट लाए हैं।
0: बताए सर।
1: कभी देख कसी ने मारा।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका रेडियो दोस्त

0: हेलो
1: जी, नमस्ते
0: जी। नाम बताएं सर। रियाज खानपुर बड़ौदा से। बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: खानपुर बड़ौदा से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सावन की मल्हार।
0: सावन की मल्हार सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार सर।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: विनोद कुमार सैनी।
0: विनोद सैनी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी मऊकला।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीए से?
1: चांद के पार चलो टाइटल सॉन्ग।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश कैसे होंगी?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
3: देवांशी मीना।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: ये कॉलोनी।
2: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: मासूम शर्मा का सॉन्ग है, आके भाव ऊपर लिए हमसे।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपका, आपकी फरमाइश के संग रेडियो डीएस में कुल किया बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम बताएं आपका?
0: मोहसिन।
1: मोहसिन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: संजय कॉलोनी।
1: पता है सर कौन सा गाना सुनना चाहते हो?
0: शाम अभी खूब है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश है। सॉन्ग रेडियो डीएसपी खुल के।

0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: गुंडे की फाइनल सर्विस।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: आपकी नाम बताएं।
1: गुलशन गंगापुर सिटी से।
0: गुलशन जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस पे?
1: सॉरी गोल मटोल।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश। कैसे हूँ रेडियो डीएस में कॉल किया था।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: शहनाज,
1: शहनाज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी गंगे कॉलोनी।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: केजीएफ मूवी का सर महबूबा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश का सॉन्ग।

0: कहाँ से बात कर रहे हैं? गाना बताए सर। हेलो
1: आधा
0: जी
1: आधा आधा
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर। आधा आधा

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुपेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
1: आंखों में कजरा है, बालों में गजरा है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद।
2: दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
4: 89.6 पे
3: रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
5: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
4: 89.6 पे
3: रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम बताएं सर।
0: भरतलाल।
1: भरतलाल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: खलनायक का।
1: कौन सा गाना है सर?
0: वो होता है ना, क्या नाम उसको, मुजरा मुजरा।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: विजेंद्र मीणा है सर।
1: विजेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
0: नादोती बिलापाड़ा।
1: नादोती
0: बिलापाड़ा
1: जी, बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: साजन मेरा उस पार है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के साथ।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: जी। अंजलि सैनी,
0: अंजलि सैनी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी, नसिया कॉलोनी।
0: बताएं अंजलि जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से? बिल्कुल
1: बोले जो कोयल बागों में।
0: सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: कमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सिटी।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सब कुछ भुला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: हाँ भैया, योगेश जांगड़े पे, मैं तेरा छत्तीसगढ़ से।
1: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: गाना आप सुनवा देंगे, फिल्म फिल्म है, अपने हिसाब से सुनवा देंगे भैया।
1: चलो ठीक है सर।
0: हाँ

0: सर नाम बताएं आपका। अंकुल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: अमित सैनी सर नाम।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मुजफ्फरपुर जी।
0: क्या नाम बताएं?
1: तेरे यार आओ। यस आई वाज
0: सुना रहे हैं सर। हेलो

0: हेलो रेडियो डीएस।
1: यस सर, नाम बताए आपका।
0: गीता राम बोर से स्पीक, जानना महाराष्ट्र। कैसे हैं सर आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताएं।
0: हम भी अच्छे हैं, सुरक्षित है सर। हमारे महाराष्ट्र के अंदर अभी तो बरसात नहीं है सर।
1: हमारे इधर भी नहीं है सर अभी फिलहाल तो। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: आज के दिवस में कार्यक्रम में मुझे सुनना है तिरंगा फिल्म का नाम है सर, और गाने के बोले इसे समझो ना तो प्यार भैया मेरा, राखी का मतलब तो है प्यार भैया, ये गाना सुना दो सर।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के। शुभ रेडियो डीएसपी कुल के धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: दिव्या।
1: दिव्या जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर से।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहती है?
0: सुनो ना, सुनो ना।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: राहुल मीना
0: राहुल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सिटी
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? सुना
1: दिल दे की दांडा में वाला
0: रहे हैं सर आपका, आपकी सुना है सर, रेडियो में बोल के चले।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: सुनहरी सफेरा
1: सुनहरी सफेरा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: भवनवास से।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: सर आपने वो कल वाला गाना क्यों नहीं सुनाया?
1: मैम, केवल फिल्मी गाने ही हम चला सकते हैं, गैर फिल्मी गाने चलाना अलाउ नहीं होता है FM रेडियो में।
0: वो तो राजस्थानी था।
1: राजस्थानी अगर शुद्ध राजस्थानी होता है तो उसको चलाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, आप दूसरा गाना बता दें, आज चलेगा आपका।
0: तेरा झुमका गिरा था दिल्ली में, बदनाम बरेली कर दी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का।

0: हेलो।
1: हाँ सर
0: जी, नाम बताएं सर।
1: प्रकाश गुर्जर।
0: प्रकाश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हरियाणवी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: ओ मेरी सासू की, भर लाई पानी।
1: आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो पर ना की हो। ए सेठानी बंठन
2: मेहंदी हाथ में
0: पड़े है, तू किनारे जागी।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: अंकित पाकर।
0: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश। के सुन रेडियो डीएसएन कुल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम बताएं।
2: विजेंद्र मीणा बोल रहा हूँ सर, बिलापाड़ा नाद होती।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: साजन मेरा उस पार है।
1: बताएं

हेलो हेलो जी, नाम बताएं। चाहत जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? हाँ जी, हेलो, गाना बताएं मैम। गाना आपकी आवाज़ पे, बिंदनी सॉन्ग।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: सिराज।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: नंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? रेडी से
1: मासूम शर्मा
0: सुना रहे हैं सर।

0: जी नाम बताएं।
1: सर प्रिंस बोल रहा हूँ।
0: प्रिंस जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नशा कॉलोनी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर गुलजार का गा दो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर गुलजार।
2: जा, क्यों कर रहा है? ओह सही जुगाड़ लगा गया भाई।

0: बहुत खेल खेल लिए मैडम, असली रिश्ता का तो इबरा पटेगा। अरे यार का केस है, यार तो छड़ा से न्यू एक अच्छे काटता है।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर।
1: सलमान खान कहाँ से बात कर रहे हैं? सलमान जी बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो देख को?
2: मेरा सर आप
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आप फरमाइए।

0: हेलो, ये नाम बताएं।
1: विवेक।
0: विवेक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: चांद सितारे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश के सॉन्ग।

0: ये नाम बताएं।
1: कविता।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं? पता है मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? हाजी
1: ना करना।
0: इसके ना करना सुना रहे हैं आपकी फरमाइश से।

0: जी नाम बताएं।
1: सलमान।
0: अजी
1: सलमान खान।
0: सलमान जी कहाँ से बात कर रहे हैं? पाटोदा से। बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: मीडियम पढ़ा लिखा
0: अजी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: शिवराज।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं शिवराज जी?
1: गंगापुर।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैरन।

0: दोस्तों अभी आपने सुना बैक टू बैक गानों का ये कार्यक्रम। दोस्तों थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी गीत।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: Radio DS.

0: किस्सा जोड़ दे 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

लस्ट वासना काम एक ऐसी वीकनेस है जो सिर्फ तुम में नहीं हर मर्द में होती है और इसे तुम्हें कंट्रोल करना है।

क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी?

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था,

कुछ फासले मोहब्बत से भी बड़े हो जाते हैं। रास्ते जुदा हो तो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। आज तुम फिर से आए हो तो दिल बस इतना कहता है, खोए हुए लम्हे कभी फिर से लौट आते हैं।

कुछ फासले मोहब्बत से भी बड़े हो जाते हैं, रास्ते जुदा हो तो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। आज तुम फिर से आए हो तो दिल बस इतना कहता है, खोए हुए लम्हे कभी फिर से लौट आते हैं।

0: हाँ जी मां।
1: ओए छोटू की कह रहे थे तू ऑस्ट्रेलिया चला गया?
0: थोड़ी होने वाली नूनू मिलना आया सी।
2: आ जाऊंगा परसों।
1: बेटा तेनू पता तो है अपने इत्थे ब्याह तो पहले मिलना ठीक नहीं।
0: चंगा संताली वाले हो, कहता रहा कि आ जाऊंगा मिलके।
1: हाँ
0: जी मां पहुंच गया।
1: चल जल्दी आ जाऊंगा
0: परसों। चंगा।

जिंदगी दे विच दिन आखरी है मेरा, अज तो बाद तेनू कदे चेहरा देखना नहीं मेरा। मैं इश्क कीता सी ते तू वपार कीता सी, गलती तेरी नहीं गलती ता मेरी सी, क्योंकि तू नहीं मैं तेनू प्यार कीता सी।

0: हाईवे के ऊपर मेरी बाइक का हो चुका है पेट्रोल खत्म, और जो भी बाइक वाला मुझे इतना सा पेट्रोल दे देगा उसको मैं दूंगा 1000 रुपए। पहला कैमरा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और दूसरा तू अपने कान के लगा लियो ऐसे फोन, ठीक है मैं रुकवाने का ट्राई करता हूँ।
1: मैंने बहुत सारी बाइकों को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन कोई तो मेरा इशारा समझ के मुझे जय श्री राम बोल रहा था, और कोई बोल रहा था भाई लगेज बहुत है, पीछे जगह नहीं है, लोगों को लग रहा है मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ। फिर मैंने तेल का और बाइक की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया,
2: आओ जरा तेल दे के जाओ।
1: फिर 5 मिनट बाद एक भाई साहब और रुक गए, भाई साहब ने बोला कोई दिक्कत नहीं है आप ले लो।
0: तो जो भी रोकता उसे हम 1000 रुपए देने वाले थे, आप रुक गए, अभी आप हमारे हो आज के विनर, आपके बनते हैं लो।
3: अरे लो लो लो आपके बनते,
0: अरे लो ना,
4: कोई गरीब आदमी ने दे दी भाई जी, इसने झूठ तो हो।
1: फिर हम भाई साहब के कहने के अनुसार पहुंच गए किसी जरूरतमंद को पैसे देने। ये अंकल जी मेरी पिछली वीडियो में हार गए थे, क्योंकि मैं एक गुल्लक की वीडियो बना रहा था जिसमें 3 में से एक ही गुल्लक में पैसे थे,
0: वहाँ दुख लगा मेरे को।
1: तो मैंने इन अंकल जी को पैसे देने सही समझे, इन्होंने मुझे बोला कि पिछली वीडियो में तो तू पगला बना गया, और बहुत ज्यादा खुश हो गए, धन्यवाद।
0: हाईवे के ऊपर मेरी बाइक का हो चुका है पेट्रोल खत्म, और जो भी बाइक वाला मुझे इतना सा पेट्रोल दे देगा उसको मैं दूंगा 1000 रुपए। पहला कैमरा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और दूसरा
5: आप लोग भी कंफ्यूज हो ना, मैं भी बहुत टाइम से कंफ्यूज हूँ कि आखिर राखी में कौन सा सूट पहनूं, और इसी चक्कर में मैंने इतने सारे सूट मंगवा लिए हैं, और जिस सूट को आप लोग बोलोगे कि ये सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वही सूट मैं राखी पे पहनूंगी। तो चलो अब मैं सारे सूट को एक एक करके अनबॉक्स करके आपको दिखाती हूँ। मेरा पेशेंस देख रहे हो, अभी तक मैंने एक भी सूट अनबॉक्स नहीं किया है, आपके सामने ही खोल रही हूँ। अब पैकेट के अंदर से तो सूट समझ में आएगा नहीं कि कैसा है, तो चलो अब इन सबको मैं पहन कर दिखाती हूँ। सच में ये सूट इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा प्रिटी आएगा। और इसकी फिटिंग सबसे मेन, तो इसकी फिटिंग मैंने एम साइज मंगाया था, इसकी फिटिंग एकदम फिट है, मुझे फिटिंग करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे ज्यादा तो इसका दुपट्टा आप लोग खुद ही देख रहे हो। और दूसरे नंबर पे है ये वाला सूट, जो कि है एक फ्रॉक सूट। चलो अब तीसरा खोलते हैं, और इसके अंदर है ये पर्पल कलर का सूट। फ्रेंड्स ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, बट सिर्फ मुझे इसका कलर अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम इरिटेट करने वाला कपड़ा है। तो अगर आपको ये कलर पसंद है तो आप भी इसको ले सकते हो, बाकी मैं तो इसे नहीं रखने वाली हूँ। यार मैं तो कपड़े बदलते बदलते ही थक गई, पर क्या करूँ अब इतने सारे ऑर्डर किए हैं और आप लोगों से सिलेक्ट करवाना है कि कौन सा राखी पे पहनूं, तो पहन के तो दिखाना पड़ेगा। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि कपड़ों में मेरी चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, अब आप लोग तो कमेंट में बताओगे ही कि अच्छी है या नहीं। तो देखो ये वाला सूट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाकी रखने वाली हूँ मैं सिर्फ एक, तो आप लोग जल्दी से डिसाइड करके बता देना कि मैं कौन सा रखूँ। और पता है इस सूट की सबसे खास बात क्या है, इसमें आपको पॉकेट मिलेगा, तो जैसे ही भैया आपका गिफ्ट देगा आप इसे अपने पॉकेट में रख सकते हो, आपको पन्नी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5वें नंबर पे है ये सूट, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, और इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इस सूट में भी आपको पॉकेट मिल जाएगा, तो पन्नी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली
6: गाइस मैं हूँ एक काम वाली और यहाँ पे खाना बनाने के लिए आती हूँ, तो आज बना रही हूँ मैं घर पे ही पिज़्ज़ा, क्योंकि दीदी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और मुझे आज घर पे ही पिज़्ज़ा बनाना है। तो मैंने गुनगुना पानी ले लिया, उसमें 2 चम्मच ईस्ट 1 चम्मच चीनी डाल के रख।
7: डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, ये तो मैंने बहुत सुना था, लेकिन न जाने क्यों मुझे भी ये फीवर चढ़ गया है, और मैं जब भी अपने लिए शॉपिंग करती हूँ तो मैं डायमंड्स की तरफ ही चली जाती हूँ। और आज मुझे सूरज ले आया है डायमंड शॉपिंग पे फिर से, और ये होने वाला है मेरे तीज का गिफ्ट जो मुझे मिलेगा मेरे इन लॉज की तरफ से। तो मैं बहुत सारे डायमंड पीसेस देख रही थी, एंड मैंने बहुत सारे पेंडेंट्स और इयररिंग्स देखे, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्यारी डिज़ाइन सेट थी, और वो था एक पियर शेप डायमंड। लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ आकर ये इतने सुंदर सुंदर पेंडेंट्स देखकर मेरा तो बिल्कुल दिमाग 360 डिग्री पलट जाएगा, क्योंकि हर एक डायमंड का कट, उसकी शेप इतनी सुंदर थी ना कि मुझे तो मन कर रहा था सब कुछ ही ले लूं, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये राउंड डायमंड ट्राई किया, एंड इसके साथ जो इसकी इयररिंग्स थे वो भी मैं ट्राई करने वाली हूँ। मुझे ऑनेस्टली राउंड डायमंड्स अच्छे लगते हैं, बट आई एम मोर लाइक अ मार्कीज एंड अ पेयर शेप्ड डायमंड पर्सन, बट आई हैव टू से यहाँ पर जो भी था ना, मतलब जो भी मैंने पहना मुझे लगा था ये भी मैं ले लूँ, ये भी मैं ले लूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने इतने सारे पेंडेंट्स ट्राई किए और एक भी ऐसा पेंडेंट नहीं था जो मुझे पसंद आया हो. हर एक पेंडेंट अपने आप में इतना डिफरेंट था ना कि मुझे मजा आ गया इसको पहन के. पर मुझे ना सॉलिटेयर पसंद है, यानी मुझे एक डायमंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है किसी भी पीस के अंदर, चाहे वो नेकलेस हो या रिंग हो या फिर इयररिंग्स हो, स्टड्स हो. यहाँ पे मैं बहुत सारे ब्रेसलेट्स भी ट्राई करी थी जिसमें से मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आए. टेनिस ब्रेसलेट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन भी हैं, पर ये वाले जो ब्रेसलेट्स थे दे वर नॉट माई स्टाइल. तो फिर मैंने इनको ट्राई करके एंड छोड़ दिया कि कभी और देखेंगे. बट ये जो एक मार्किस डायमंड का ब्रेसलेट था, विच इज़ दिस टेनिस ब्रेसलेट, भाई इतना सुंदर था, बहुत ज़्यादा. मैं सूरज को बार बार दिखा रही, मैंने कहा देख ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है. एंड एंड में हमने डिसाइड किया कि हम एक पेंडेंट और स्टड्स के साथ, क्योंकि वो हमें बेस्ट लगे थे. हालांकि सारे टेनिस ब्रेसलेट्स भी बहुत सुंदर थे, पर पता नहीं क्यों मुझे पता है कि मैं ब्रेसलेट्स उतने नहीं पहनूंगी. तो हमने ये राउंड शेप डायमंड पेंडेंट और इसके साथ ये स्टड्स लिए हैं, जो मुझे बहुत ही लाइक क्लासी एंड एवरीडे वेयर के लिए बहुत अच्छा लगा. ये मेरे ऊपर भी काफ़ी क्यूट लगा मुझे. हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी भी ये स्टड्स मेरे लिए बड़े हैं, तो हम लोगों ने दो साइजेस को कंपेयर करने के बाद जो छोटा वाला था वो हमने डन कर दिया है. इसी के साथ मेरा तीज गिफ्ट हो चुका है फाइनल. आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, ये तो मैंने बहुत.
3: जब आपकी विदाई हुई थी और आंटी रो रही थी, तब मैंने आंटी से प्रॉमिस करा था कि आंटी अब भाभी को घर जाके रिक्की या यश नहीं मिलेगा, भाभी को उनका लक्ष्मण जी और भरत जी मिलेगा.
8: अरे खुश रहो, खुश रहो.
3: इसी के लिए कुछ करना है. भाभी मुझे आपकी फुटप्रिंट अपनी वाइट टी शर्ट पे चाहिए दोनों. अभी ये टी शर्ट मैं आपकी और भैया की फर्स्ट एनिवर्सरी पे पहनूंगा.
8: जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, कितना करम क्यों न जाने.
3: जब आपकी विदाई हुई थी और आंटी रो रही थी, तब मैंने आंटी से प्रॉमिस करा था कि आंटी अब भाभी को घर जाके रिक्की या यश नहीं मिलेगा, भाभी को उनका लक्ष्मण जी और भरत जी मिलेगा.
8: अरे खुश रहो, खुश रहो.
3: इसी के लिए कुछ करना है. भाभी मुझे आपकी फुटप्रिंट अपनी वाइट टी शर्ट पे चाहिए दोनों.
8: जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, कितना.
3: अभी ये टी शर्ट मैं आपकी और भैया की फर्स्ट एनिवर्सरी पे पहनूंगा.
8: जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी.
9: गाइस अभी जस्ट कंघी वगैरह करके मैं मस्त तैयार होके निकली थी बाहर, और मेरा भाई जस्ट दरवाजे पे बैठा था. ऐसा कर दिया मेरे भाई ने. इतना खराब कलर लगाया है पागल. अब मेरी बारी, चलो अब मेरी बारी है ना.
10: हैप्पी होली गाइस.
9: यार
10: मेरा हैप्पी होली गाइस.
9: अब मेरी बारी, चल दे
10: लगा ले लगा.
9: पूरा लाल लाल.
10: सेम टू यू.
9: हैप्पी होली. हैप्पी होली चाचू.
10: मेरा फोन खराब कर दी तूने पूरा.
9: और मेरा हैप्पी होली मम्मी.
10: हैप्पी होली. पर मम्मी होली इधर दिख. होली जैसे लग नहीं रहा है लेकिन. गाइस हमारे यहाँ पे ना एक दिन लेट होली थी, मतलब कल ग्रहण वगैरह कुछ ऐसा था, तो एक दिन की गेप थी, तो आज ऐसा कुछ लग नहीं रहा होली. मेरे को नहीं लग रहा. अभी लगेगा डीजे में जाएंगे तो. अब भांग पीना पड़ेगा तब जाके होली.
9: मेरे लिए भी एक भांग. मैं भी पीऊंगी. गाइस अभी जस्ट कंगी.
11: अभी मैं एक न्यूज इंटरव्यू में था, वो मुझसे ये पूछ रहे थे और उन्होंने सीधा सवाल पूछा था और उन्होंने सरकास्टिकली पूछा था कि आज आप यहाँ बैठे हैं, इतना सब कुछ हो गया है, आपने जीवन में इतना अचीव कर लिया है, इतने ज्यादा लोग हैं, आपकी कंपनी है, ये है, क्या आपने बचपन में कभी ऐसा सोचा था. यू नो वॉट आई आंसर्ड कि हाँ मैंने सोचा था. हाँ मैंने हर दिन सोचा था. मैंने हर बार यही सोचा था.
12: दुनिया की सारी अप्सराएं मंगा ही रही हैं, तो मैंने भी मंगा लिया. आखिर ऐसा क्या है जो हर लड़की मंगा रही है. अपनी साड़ी में लगाने के लिए ये वाली आल पिन. अरे नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, आल पिन वाला जूड़ा पिन. तो चलो जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं. तो भाई साहब ये वो वाली पिन है जिसे लड़कियों ने 700 से 800 रुपए में भी खरीदा है, लेकिन मैंने इसे मंगाया है. बाद में बताऊंगी, अभी इसको देखो. और मुझे इसके बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये इतनी बड़ी आएगी. देखो ये मेरे एकदम हाथ की साइज की है. चलो अब इसे बालों में लगा के देखते हैं कि ये कैसे लगती है.

0: लगा के देखते हैं दूसरे तरीके से। और दूसरे तरीके से लगाने पर तो ये तुरंत ही गिर गई।
1: तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसका रियल रिव्यू दूं तो मुझे ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी आएगी। और जो मैंने पहली बार में लगवाया था बहन से पहले वाले जोड़े में, वो एकदम से टाइटली बंध गया था। एकदम क्लेचर की तरह तो नहीं है, पर स्टाइल के लिए आप इसे बिल्कुल मंगा सकते हो। और सबसे मेन बात,
0: ये अलग अलग कलर्स में भी आती है।
1: और अगर आपको मंगाना है तो मैं नीचे टैग कर दूंगी। बाय बाय
0: दुनिया की। तो बाढ़ आने के बाद आज नानी के
2: यहाँ से आपको हर एक फ्रूट खाने पे मैं देने वाला हूँ 100 रुपए, लेकिन आपके पास 10 मिनट होंगे। अगर आपने एक अंगूर भी खाया तो भी आपको 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन वो हर एक फ्रूट एक ही बार खा सकता है।
3: कड़क
2: 10 मिनट में आप कितने फ्रूट खा सकते हो?
4: चेक कर दें भाई, 10 मिनट का टाइम दे दो।
2: 3, 2, 1 स्टार्ट। टाइम हो चुका है आपका शुरू। और पहला अंगूर 100 रुपए गए। और दूसरा आ रहा है भाई, क्या है ये? आलू बुखारा 14 सेकंड 200 रुपए। अभी आया है एक चिक्कू 300 रुपए के लिए। गिराना मत भाई, खाना है पहले इसको पूरा। 40 सेकंड में 300 रुपए ले गया। अभी आया भाई एक आड़ू।
5: नहीं खोदे, थोड़ा चुप कर बे कुत्ते।
2: 4 कंप्लीट और 1 मिनट अभी लिया है भाई ने एक एप्पल। खाना शुरू किया जाए
5: भाई। कहाँ से वापस?
4: जिवाणी से।
2: फिर मैं गया अबे
6: साले।
2: भाई साहब छटा खा रहा है और 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं।
5: अरे पानी कटवा ले।
2: तेरी पहली कटवाण ला रही
4: है। लुगाई भी आना है बाजार में।
2: लुगाई डर तो फिर
5: शादी के बाद अपनी औरत से डर लगता है बस।
2: 3 मिनट हो चुके हैं। अभी आया है नारियल पानी। क्या बात है। और ये 8 नंबर आ चुका है कीवी। और टाइम अभी 3 मिनट ही हुए हैं। ये 7 कंप्लीट।
5: तुम्हें कहना चाहोगे?
4: हाँ।
5: तो बोल दी।
4: टाइम तो
5: बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास।
2: और 9 नंबर आ चुका है केड़ा। और टाइम हो चुका है 4 मिनट।
5: भाई पूरा कंप्लीट करना है ठीक है?
4: पढ़ पढ़ ले।
5: मतलब इसको अगर बिना छिलका खाते हो ना तो 300 रुपए है।
4: खबर है।
5: अरे बिना छिलका पूरा सुना रहे, मत मजाक करो। आधा मिनट में 9 आइटम खा लिए भाई साहब। 900 रुपए हो गए। ये लिया है भाई साहब ने छोटा सा आम।
2: मैंने भी छोला को।
5: टाइम है तो चोचरा तो करेगा भाई।
2: आम को लग गया तो नहीं।
7: ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो।
2: 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और 11वां आइटम भाई खा रहे हैं तरबूज। अभी भाई साहब ने मंगवाया है अफ्रीका से संतरा। भाई ने लुगाई डिकन लग रही है, चैलेंज करने लग रही है। 3 मिनट और है आपके पास, इसको खा जाओगे तो 1100।

0: यहाँ से आपको हर एक फ्रूट खाने पे मैं देने वाला हूँ 100 रुपए।
1: आपके घर में अगर स्लीवलेस एंड क्रॉप टॉप्स अलाउ नहीं है तो ये प्रिटी टॉप्स परफेक्ट ऑप्शन आपके लिए, जो कि बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं है।
2: सूरज को हुई हरारत।
3: एक ऐसी महिला जिसे बचपन में पोलियो हुआ और बाद में ससुराल वालों ने बेरहमी से घर से निकाल दिया था, आज उसी शेरनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल जिताकर इतिहास रच दिया है। ये कहानी है शर्मिला धनखड़ की। बचपन में ही इन्हें पोलियो हो गया था, लेकिन इनकी जिंदगी का असली नरक तब शुरू हुआ जब इनके पहले पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए इन्हें भयानक यातनाएं दी। साल 2012 में दरिंदगी की सारी हदें पार करते
4: हमारी फैक्ट्री पे कांटा मारने वालों की हो गई है कमी, तो अभी वहाँ से फोन आया कि घर पे जितने भी लोग हैं सब लोग आ जाओ कांटा भरने के लिए। तो ये देखो
5: गाड़ी भर भर के जा रही है,
4: गाड़ी भर रही है इधर। देखो पीछे देखो, ये भैया लोग मिलने आए थे, इनको भी लेके जा रहे हैं, मतलब सब जाएंगे।
5: चलो गाड़ी स्टार्ट कर,
4: तू पकड़। चलो ना मैं घुमाऊंगी।
6: जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन।
4: निकालूंगी तो पायलट क्यों बैठ गया था?
5: तब बस तो सीखेगी कि नहीं। अरे स्लो मोशन में ले रहे बाबा। चल चल चल भगा इनसे पहले भगा।
4: उनको फोन करके इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये देखो ये हमारा काटा आया है और गिनती के 6 लोग हैं और वो काका जी का भी अलग आया है। तो हम लोग आए थोड़ी देर गुड़ बनाए और अभी वो जो लेडीज लोग थी ना वो लोग उनके काटे पे बैठी थी, अब वो लोग हमारी इस पे आ गए, तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने घर। अब
5: चले
4: देखते हैं कब आते हैं, तो अगली बार कब आएंगे।
5: इमरजेंसी थी इसलिए आज आ गए, नहीं तो आते नहीं है।
4: हाँ इमरजेंसी। हमारी फैक्ट्री पे कांटा भरने वालों की हो गई है कमी, तो अभी
7: खुद दुनिया भर में घूमने के बाद मुझे आई बेहद शर्म और मैं निकला अपने मम्मी पापा को लेके पहली फैमिली वेकेशन पे। पूरे मारवाड़ी ठाटवाड़ से हुआ हमारा स्वागत। देखो माँ बाप के साथ मजा तो आता पर एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है मेरे भाइयों का, ये है मेरे विक्रम बेताल। और जब बालकनी व्यू इतना सुंदर हो तो ट्रिप का मजा डबल। अगर होटल अच्छा हो तो बाहर जाने का मन ही न करता। अब मैं यहाँ भी सोऊंगा और यहाँ भी, कोई उठाएगा नहीं। ये रही मेरी शर्मिली माँ और ये मेरी दोनों चुगली चाची। अगर कभी कुंभलगढ़ जाओ तो 100% इसी जगह रुकना यार। 50 रुपए का भारी खर्चा करके मैंने मछली को खाना खिलाया और भगवान से फरारी मांग ली। भगवान ने दिया इंस्टेंट फल। फोक डांस देख के मम्मी पापा खुश और ये खुश तो मैं खुश। फिर खाया हमने दाल बाटी चूरमा और बन गए सूरमा अपने कुछ प्यारे भाइयों के साथ में फोटो शोटो एक्शन वैक्शन। बाकी दुनिया में हर चीज से ज्यादा सम्मान इन मेरे प्यारे भाइयों का जो मुझे इतना प्यार करते हैं। अब अगर दूसरा ब्लॉग चाहिए हो तो कमेंट में बता देना। बाकी ये प्रॉपर्टी शानदार है, अपना ख्याल रखो। खम्मा गड़ी खुद
8: मेरी बेटी लगा हुआ है मेहंदी और या इतने सुंदर डिजाइन लगा कर इसने देख के ना मेरा भी जी कर गया मेहंदी लगवाना। जीगू तने तेरे हाथा का लगा दी हो तो मेरे भी लगा दे मेहंदी।
9: हाँ मम्मी मैंने तो लगा ली, लाओ आपके भी लगा देती हूँ मेहंदी।
8: मैंने मेहंदी लगवानी शुरू करिए थी, इतना नहा गया जीगू के पापा और बोले मैं जाऊँ हूँ हिसार। महा हिसार के लेके आओगे? लेना तो कुछ को नहीं, मेरे बाल दौड़े हो रहे, इन्ना काले करा के आऊँ? बस इतनी सी बात है, लाओ मैं 10 मिनट में सारे बाल काले कर दूंगी घर आई। जीगू लेके आई ये शैम्पू,
9: ये है कोकिला का हेयर कलर शैम्पू, इसे 10 मिनट में सारे सफेद बाल काले हो जाएंगे। सबसे पहले ग्लव्स पहनने और बालों को अच्छे से गीला कर लेना है और इसे नॉर्मल शैम्पू की तरह बालों में अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है। और इसके यूज करने से कोई एलर्जी भी नहीं होती क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है। ये आमला रीठा शिकाकाई जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बना है। ये शैम्पू लगाए 10 मिनट हो गए और अब बाल धोने के बाद ये देखो सारे सफेद बाल डार्क ब्राउन हो गए।
8: देखिए इसका कमाल कर दिए नहीं सारे बाल काले।
9: आपको भी इसका लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना।
8: मेरी बेटी लगाओ है मेहंदी।
10: छुपाना सकोगे मैं वो
11: राधे राधे। सोचा था अपना 25th बर्थडे इस बार मैं सेलिब्रेट ही नहीं करूंगी, लेकिन भगवान जी को तो कुछ और ही मंजूर था। यकीन नहीं हो रहा मुझे कि मैं अपनी लाइफ की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ थाईलैंड, वो भी अपने बर्थडे वीक में। जैसे तैसे पापा को कॉल करके रातों रात अपना पासपोर्ट और कपड़े मंगवाए दिल्ली और करवाई है अपनी ग्रूमिंग। अब जल्दी जल्दी पैकिंग करके मैं हो गई रेडी रेड स्लीवलेस कॉट सेट पहन के। पहले तो मैं कट स्लीव्स पहनने में इतना हिचकिचाती थी क्योंकि मेरे अंडरआर्म्स इतने पिगमेंटेड थे, बट नॉट एनीमोर जब से मैंने ये कारमेसी ग्लो रिवाइव अंडरआर्म रोल ऑन अप्लाई करना स्टार्ट किया और इसने मेरी पिगमेंटेशन को मानो
12: मंतर ही कर दिया।
11: और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने इसे यूज किया और ट्राई करने के बाद उन्हें इतने अमेजिंग डिफरेंस देखने मिले, क्योंकि इसमें है मैंडुलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड
12: जो पिगमेंटेशन को कम करने और स्किन रिन्यू में सपोर्ट करता है।
11: भाई इसमें राइस वाटर और विटामिन ई जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन को स्मूथ एंड ब्राइटर बनाने में हेल्प करते हैं। ग्रीन टी पी के रात में 3 बजे कराया आपने सूटकेस का वेट चेक,
12: सुबह 6 बजे किया फ्लाइट और 7 महीने जा सकते हैं ओनली 20 kg ऑफ वेट,
11: ऊपर से मेरे पीरियड्स क्रैम्प, लेकिन देख रहे हो एयरपोर्ट में मेरा कॉन्फिडेंस
12: बिकॉज ऑफ माय कारमेसी रोल ऑन आपके लिए भी टैग कर दिया। प्रोडक्ट ऑल्सो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, नायका, अमेजोन और purple.com। राधे राधे
11: राधे राधे। सोचा था अपना 25th बर्थडे।
13: भाई खाली हो क्या?
14: हाँ खाली हूँ।
13: हमारे घर में चलो परा लगाने।
14: हट, महीने आदि तुम्हारे यहाँ परा लगाने, पिछले बार आई थी वो तुम्हारे यहाँ के काले आदमी ने मेरे को 4 बार आई लव यू बोला था।
13: क्या बोला? 4 बार आई लव यू बोला? हाँ 4 बार आई लव यू बोला ना तूने? आई लव यू बोलने के लिए तेरे को खेत ले जाता हूँ साले, पूरे गांव भर में बदनामी करके रखा है तूने मेरी। चलो दूसरी बनियान देखने चलो। भाई चलो हमारे घर में परा लगाने।
14: मर जाऊंगी पर तुम्हारे घर नहीं आती कभी परा लगाने।
13: क्यों?
14: पिछले बार आई थी तुम्हारे घर परा लगाने, तुम्हारे आदमी ने मुझको देखा मुआ मुआ कर रहा था, धरती साला।
13: कैसा करता था चल एक बार करके दिखा। करने तेरे को खेत ले जाता हूँ, मुआ मुआ करने खेत ले जाता हूँ, कैसा ले तेरे को? साला तुम दोनों के कारण गांव में मेरी इतनी बदनामी हो गई है ना, किसी को पूछने में भी शर्म आ रही है मेरे को। ये क्या गाली देती है तो और मेरे को। भाई चलो हमारे घर में परा लगाने।
14: मैं सीधा तेरे मुंह पे बोलती हूँ, ये दोनों आदमी आएंगे ना तो मैं तेरे घर में परा लगाने आऊंगी।
13: भाई खाली हो क्या?
14: हाँ खाली हूँ।
13: हमारे घर में चलो परा लगाने।
14: हट, महीने आदि तुम्हारे यहाँ परा लगाने, पिछले बार आई थी वो तुम्हारे।
15: मम्मी क्या है? मम्मी मत बोल मुझे, मैं तुझसे नाराज हूँ।
16: भाभी आइसक्रीम देना, ये वाली
17: ये आइसक्रीम है।
16: अरे क्या चीज है फिर,
17: तेरी आंखें खराब हो गई है क्या?
16: भाभी सिंदूर लगा रखा है मंगलसूत्र।
17: अबे ओ, तेरी में कोई भाभी भाभी नहीं, तू मेरा कोई देवर वेवर नहीं, दुकान पे खड़ी हूँ मैं।
16: अच्छा ये लेना आया था।
17: पहला नाम मेरा पायल उल वाली है।
16: अच्छा कितने रुपए का ये?
17: ये 100 रुपए का होता है। ये आइसक्रीम नहीं है गवारो?
16: अच्छा ये आइसक्रीम नहीं है?
17: नहीं नहीं, ये कोरियन डिश है।
16: आपने लिपस्टिक लगा रखी है क्या?
17: मैं चाहे लिपस्टिक लगाऊं चाहे मैं कुछ भी लगाऊं, तू कौन होता है बोलने वाला?
16: अच्छा आप, अच्छा नाक में कुछ पेन भी रखा है क्या? आए हाय
17: भाई, तुझे आइसक्रीम खानी है? अच्छा लाओ।
16: हाँ लगाओ लगाओ। 100 रुपए में मिलेगा ये?
17: हमारे यहाँ 100 रुपए में मिलता है।
16: अच्छा आप बेचोगे तो 500 में भी ले?
17: हाँ बेचेंगे तो 2000 में भी बेचेंगे।
16: सही है,
17: खाना ही खाओ, नहीं खाना तो चले जाओ। सही, मैंने घर से थोड़ी बुलाया किसी को।
16: या आप अपने ही हाथों से बनाते हो?
17: नहीं मैंने 4-5 नौकर रख रखा है, आपको नहीं पता मेरे घर में है?
16: अच्छा
17: हाँ जी।
16: आपकी शादी हो गई वैसे?
17: क्यों, मेरे रिश्ते लाने हैं आपने?
16: रिश्ते नहीं लाने,
17: कुवारे बैठे हो, बुढ़े हो गए कुवारे के मारे। अच्छा? मेरे रिश्ते करा रहे हो?
16: ये देखो भाई स्माइल तो तगड़ी है वैसे आपकी।
17: हाँ मैं हूँ ही तगड़ी, स्माइल भी तगड़ी है मेरी।
16: अच्छा
17: मेरी जुबान भी बहुत तगड़ी चलती है फिर।
16: अच्छा कितना टाइम लगेगा इसे?
17: अब इसमें तेल में घुस जाऊँ क्या या तुम्हें पढ़ाई कर दूँ उसके साथ साथ?
16: कैंची है, जुबान थोड़ी है ये।
17: चाहे मेरी कैंची हो चाहे जुबान हो, है तो मेरी ना।
16: भाभी कितने बच्चे हैं वैसे आपके?
17: अबे तेरे मेरे बच्चों से क्या उनके खर्चे चलाने हैं क्या?
16: अच्छा बन गया क्या?
17: हाँ जी बन गया ये
16: पूरा। तो जला दिया इसे?
17: जला भी दिया लेकिन खाना भी पड़ेगा, पायल रोल वाले के कार्ड पे खड़े हो।
16: अच्छा
17: हाँ जी।
16: आपका नाम चलता है क्या यहाँ पे?
17: मेरा नाम हर जगह चलता है।
16: अच्छा
17: हाँ जी।
16: अच्छा ये क्या आ रहा है?
17: ये चीज लिक्विड होता है।
16: अच्छा चीज लिक्विड है ये?
17: हाँ जी, जो पिज्जा में आप लोग खाते हो। और ये रहेगी तंदूरी।
16: मेहंदी लगा रखी है क्या हाथों में आपने?
17: अबे तू यही स्कैन करने आता है क्या, क्या लगा रखा है क्या नहीं लगा रखा है? अच्छा, सामान अच्छा, और घर जाओ ना।
16: अच्छा ठीक है सॉरी।
17: हाथ धो गई। और ये आएगा सीक्रेट मसाला।
16: सीक्रेट?
17: हाँ जी ये लो।
16: आपने बालों में तेल भी लगा रखा है क्या? अच्छा लो सॉरी सॉरी। ये तैयार हो गया?
17: तैयार हो गया।
16: आपका नाम क्या है वैसे?
17: पायल रोल वाली मेरा नाम।
16: अच्छा पायल रोल वाली है भाई। कितना रुपए में?
17: 100 रुपीज का।
16: 100 में अगर जैसे कोई ट्राई करना चाहे तो कहाँ आना पड़ेगा?
17: लोकेशन? मयूर विहार फेज 2।
16: मयूर विहार
17: फेज 2।
16: ऐसे कर दो एक बार। भाभी आइसक्रीम देना ये वाली।
13: साला मैंने रूम को पेंट तो कर लिया लेकिन इसके चक्कर में पूरी मेरी फर्ची खराब हो गई। इसको साफ करना तो अति आवश्यक है, नहीं तो पूरा काईधड़ दिखेगा ये। अबे प्रभात सुनना, साक्षी और शांति एक साथ मेरे घर में
18: दूध को आए, तू जल्दी से आ संतु उसके साथ।
13: क्या देख रहे हो बे?
19: भाऊ वो जो 2 लड़के आए थे दूध के लिए, वो कहाँ है?
13: वो तो दूध लेके चले गए घर। अबे कहाँ जा रहा है
19: वो? ये 35 वाली चॉकलेट लाया था, वापस करके आ रहा हूँ अभी।
13: तुम लोग वैसे तो बहुत चालू लोग हो, लेकिन कैसे काबू करना है मेरे को सब पता है। चॉकलेट बढ़िया लाया बे।
20: भाई डिजाइन तेरे पसंद की क्या?
13: हाँ बे, मैंने पसंद किया, वो कैसी लग रही है?
21: नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता।
20: बहुत गजब है, बहुत गजब, मजा आ गया डिजाइन देख के तो। और जब ये डिजाइन बनाए तो टेप चिपकाए थे इनमें?
13: नहीं भाई, टेप वेप नहीं चिपकाया था। मिस्त्री क्या करता था, ऐसा हाथ रखता था, ऐसा मारता था, टेप की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे।
20: अच्छा, अब समझ आया मुझे, मुझे लगा टेप चिपकाता हूँ।
22: क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता।
19: खत्म।
13: साला मैंने रूम को पेंट तो कर लिया, लेकिन इसके चक्कर में पूरी मेरी फर्ची खराब हो गई।
23: तो आज गैस मैं अपने घर में गई थी, मेरे साथ ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। आज सुबह सुबह मैं लगा रही थी झाड़ू।
7: बस दो मिनट रुको, आज तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा तुम्हारे दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे।
23: ये रही वो टार्जन कार जिसे आप बचपन में देखते थे, जो अपने आप चलती थी। इसमें लगे हैं बहुत सारे कैमरे और सेंसर्स।
7: इस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है और हम इसके साथ जा रहे हैं। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। सबसे पहले गाड़ी ने हमसे सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला
23: और फिर हो गई हमारी राइड स्टार्ट।
7: मम्मी कसम यार, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा मैं ऐसी गाड़ी में जिसमें ड्राइवर ही नहीं है।
23: अरे तुझसे बढ़िया चला रही है ये।
7: वैसे ये है तो जैगुआर की वेमो रोबो टैक्सी, पर जब ये खुद चल रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत टैक्सी हो।
23: अबे ये भूत टैक्सी नहीं, AI और रडार से चल रही है।
7: दीदी इंडिकेटर भी दे दिया मुंडने से पहले, सारे ट्रैफिक रूल फॉलो कर रही है। और देख नीचे भी उतर गई। चीज कहूँ की है, ड्राइवर का खर्चा बच गया।
23: और देखो क्रॉसिंग पर रुक भी रही है।
7: भाई कुछ भी कहो, गाड़ी ने तो मौज कर दी। 2 किलोमीटर के 2000 रुपए लेके हमें टाइम पे तार के चलेगी। बाय। बस 2 मिनट रुको।
24: मुझे नहीं पता था मेरी प्यारी सी बहन और मेरे प्यारे से जीजू मुझे इतना अच्छा तोहफा देंगे तीज पर। मेकअप करवा रही थी मैं पीयूष से, हेयर स्टाइल करा रही थी अपने पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट से, और ये जो लहंगा है मैंने हर एक चीज टैग कर दी है कहाँ से किसने दिया है। लुक आज की बहुत प्यारी थी, जैसे मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही। रेडी होकर सीधा अपनी सिस्टर के घर आ गई थी जहाँ पर था
19: भाई इस बंदे ने क्या कमाल की।
25: हेलो गाइज, अब सब कुछ

0: आज है प्रभात के घर पे अखंड रामायण और कल है गृह प्रवेश।
1: तो अभी पूरा डेकोरेट हो गया है, ये देखो घर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे होने वाला है अखंड रामायण। श्याम सुंदर मंडल सिंधपुरी हमारे गांव के पास का ये अखंड रामायण ये करवाते हैं। तो ये देखो भाई,
0: मैं दिखाता हूँ आप लोगों को प्रभात का घर। इसके ऊपर में भी ये बनाने वाला है, अभी नीचे तो बन गया क्योंकि ये लोग दो भाई है, तो एक भाई नीचे रहेगा एक भाई ऊपर रहेगा शायद।
1: तो इधर में बनाने का प्लान है, तो ये ऊपर में बना के रख दी है सीढ़ी वगैरह ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी ऊपर का काम चालू होने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि पैसा नहीं है।
0: तो अभी तो मैं दिखाता हूँ इसका घर क्या क्या बना है इसने। अभी घर के अंदर कुछ भी डेकोरेट नहीं हुआ है, बस रूम बने है और जो फिनिशिंग है ना वो हुई है, बाकी फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं है अभी। तो
1: यहाँ पे चलेगा आज रात भर अखंड रामायण, कल सुबह खत्म होगा। तो भैया देखो यहाँ से करेंगे हम एंट्री, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा हॉल और हॉल की डिजाइन वगैरह बढ़िया करवाया है। यहाँ पे फर्नीचर वगैरह सब लगेगा, टीवी लगेगी तो बढ़िया दिखेगा। यहाँ से इधर में एक रूम है, यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, ये देखो पूजा का करवाया है, मंदिर वगैरह बनाया है। तो ये तो ऐसे ये रहेगा रूम, और अंदर जाएंगे तो दो रूम मिलेंगे। ये रूम प्रभात के भाई मोहित का रहेगा ऐसा बोला था उसने, और ये रहा प्रभात का रूम, यहाँ पे प्रभात रहेगा। इसने मस्त डेकोरेट किया है, अपनी फोटो वोटो भी लगा दिया, ये देखो फोटो लगवा लिया है बढ़िया। और ये देखो ये खिड़की बनवाया है मस्त वाली यहाँ पे, और यहाँ पे सम्मान समारोह की जो ट्रॉफी मिली थी वो रख दिया है, और ये एक ट्रॉफी दो ट्रॉफी है। यहाँ से बाहर निकलो तो इधर में है किचन एरिया, ये देखो फ्रिज वगैरह रख दिए है। इधर में है किचन, किचन में भी अभी कुछ भी सामान नहीं है, गैस वगैरह लगाने का बाकी रह गया है। पानी वगैरह आ रहा है क्या? पानी भी तो नहीं आ रहा है भाई, आ रहे आ रहे आ रहे, पानी वगैरह आ रहा है। ड्रॉप वगैरह तो बढ़िया बनवाया है यार इसने।
0: किचन से बाहर निकलो तो इधर में भी एक छानी टाइप का बना हुआ है, ये देखो इधर अभी सब्जी भाजी का रखा है, ये कटेगा और आज बनेगा, आज नहीं कल बनेगा क्योंकि कल वास्तु गए, आज तो बस ऐसे ही पूजा पाठ है।
1: तो ये इधर बाहर का एरिया है, मैंने इसको बोला था कि यहाँ पे वो लगा लेना सफेद वाला जो पीओपी का रहता है ना चादर, यहाँ से ऐसे नीचे नीचे तो अच्छा दिखता, पर इसने लगाया नहीं, पैसे नहीं है बोला, अभी खत्म हो गए।
0: तो ये था इधर का एरिया, और बाहर में भी मस्त आंगन बनाया है, ये देखो
1: ये रहा आंगन, और इधर बाथरूम वगैरह बनवा के रखा है।
0: तो प्रभात का घर तो बढ़िया बन गया यार, अब मेरी बारी है, मैं कब बनाऊंगा पता नहीं, मेरे घर पे ना जमीन बहुत कम है यार, तो मैं ढूंढ रहा हूँ अभी जमीन वगैरह, कहीं मिल जाए तो मैं भी बनाऊंगा, पर गांव में अच्छी मिल नहीं रही है और पैसे भी नहीं है अभी ज्यादा मेरे पास, तो दिक्कत हो रही है थोड़ी।
2: आज है प्रभात के घर पे अखंड।
3: आज मैंने सूरज को एक बहुत बड़ा शौक और 2.5 लाख का सरप्राइज एक साथ दिया, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ पहले जो शौक मैंने उसे दिया कि लैपटॉप मुझसे अपेरेंटली गिरकर टूट गया है, तो उसका क्या रिएक्शन था। मैंने उसको सब कुछ बताया कि ऐसे हम लोग जब सुबह शादी से आ रहे थे तो मुझसे एक गिर गया था, एंड वो सच में इतना ज्यादा टेंशन में आ गया क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसका काम ना हो, एंड इस वक्त उसका काम स्टेक पे है तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में, आप देख सकते हो इसके आईब्रो जब जब ऊपर होती है ना उससे डर लगने लग जाता है। यहाँ पर सब इसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा ऐसा खराब हो गया एंड एटलीस्ट 15 डेज के तो ये सर्विस सेंटर पे जाएगा नहीं, सबसे क्वेश्चन कर रहा है क्रॉस क्वेश्चन की कैसे होगा 15 दिन के लिए अगर जाएगा।
4: भाई अगर मोदी जी तक मेरी ये वीडियो जा रही है ना।

0: हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा मेहंदी कंपटीशन है तो आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और साथ साथ डरी हुई भी हूँ। तो सुंदर सुंदर बन के निकल जाती हूँ मैं कंपटीशन के लिए। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद एक सहेली मानी है कंपटीशन में मेहंदी लगवाने के लिए, वो भी पता नहीं कब आएगी। अरे ये तो आ गई, अब सुंदर लोग थोड़ा वेट तो कराएंगे ही। सुंदर जो ठहरे तो फुग्गा उग्गा तो दिख गया है, मतलब कॉम्पिटिशन यही होगा, तो चलो घुस चलते हैं यही। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मेरा स्वागत किया जाए। तो मेहंदी कंपटीशन शुरू हो चुका है और मेरा हाथ कांपना भी शुरू हो चुका है, जैसे हमेशा होता है। ओम भूर भुवस्वः, हाथ कांपना बंद हो जाए। ओम भूर भुवस्वः, हाथ कांपना बंद हो जाए। कंपटीशन का टाइम पूरा हो चुका है और जजेस आके मेहंदी को चेक कर रहे हैं। तो मैंने ये वाली मेहंदी लगाई और हुआ ये कि मैं फर्स्ट आ गई। सच में
1: हेलो, हाँ क्या हुआ? क्या तेरा भाई देखो शॉपिंग पे नहीं लेके जा रहा है तो मार दे।
2: अरे बाप रे,
1: सो जा, शॉपिंग जाने की इच्छा मारने की बात कर रही थी, तू सो जा। हाँ सुनी क्या, इच्छा मार दे शॉपिंग पे जाने की, ठीक है बाय। हेलो, हाँ क्या हुआ? क्या तेरा भाई देखो

0: घर में ये सांप देख के मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। आज मम्मी से हमें ड्यूटी मिली है पूरे घर की साफ सफाई करने की। पहले तो खंडर बने पीछे वाले रूम को साफ किया और आ गए किचन वाले रूम को साफ करने। सोफों को साइड हटाकर अच्छे से झाड़ू लगाई। सोचा इसे भी हटाकर सफाई कर ही देती हूँ, पर हमें क्या पता था यहाँ इतना बड़ा सांप निकलेगा। इसे देखकर इन दोनों की तो बोलती ही बंद हो गई और ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। मैं भाग के गई और सोते हुए भाई को जगा लाई। भैया तो ऐसे घूरे जा रहे जैसे आंखों से ही डरा के भगा देंगे। कोई देख सुना लेते हुए हमने तो सांप पकड़ने वाले भैया को बुला लिया। ये काम हमसे न होने वाला था। भैया ने तो अपनी छड़ी से सांप को ऐसे पकड़ा जैसे हमारे भैया किसी काम के लिए हमें पकड़ते हैं। देखो कैसे भागे जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पर रहेगा तो पक्का मारा जाएगा, इसलिए तो भैया सांप को अपने साथ ले जा रहे हैं। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज घर में ये सांप देख के
1: तो गाइज मेरे भाई का फिर से एक और सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है, एल्बम सॉन्ग, और ये उसके खुद के चैनल के लिए हर्ष पुष्पतोड़े व्लॉग्स के लिए। तो आप जाके देखना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अभी तो बस शूट चल रहा है, ये देखो इतने सारे लोग हैं। और ये मैं अभी तो सबसे पहले पूजा होंगी। और जो हमारे गाइड भैया है ना, वो एक सांप लेके आए और अभी वो उसको रिलीज कर रहे हैं। बड़ा धामन है वो, देखो मैं दिखाती हूँ, बहुत बड़ा है, वो जा रहा है, बहुत बड़ा है। मैंने ऐसा खुले में इतना बड़ा सांप पहली बार देखी, मतलब वो इसमें देखी, क्या बोलते उसको जो भी बोलते उसमें देखी, लेकिन ऐसा खुले में कभी नहीं देखी मैं, सही बता रही हूँ भैया।
2: ये दीदी की हिम्मत है इतने पास से देखने की, कम से कम 1 किलोमीटर दूर भाग गया था।
1: इसे भी ज्यादा लंबा था मेरे से भी। तो गाइज मेरे भाई का फिर से एक और सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है, एल्बम सॉन्ग, और ये उसके खुद के चैनल के लिए हर्ष पुष्पतोड़े व्लॉग्स के लिए। तो आप जाके देखना आप लोग।

0: वाले को एक काम बताया तो एक काम नहीं हो रहा है उससे ढंग से।
1: प्रभात, जिस दिन मैं भाव बन गया ना, ये साले को इतना मारूंगा जिंदगी भर याद रखेगा। चल
0: साला, ये मालिक लोगों के पीछे भी बहुत किलकिल रहती है। ये काम देखो, वो काम देखो। साला तुम लोगों का तो सही है, 200 रुपए मिल गए, दिन के बाद खत्म। जिस दिन तुम लोग मालिक बनोगे ना, तब पता चलेगा कि काम क्या होता है।
1: ठीक है ना, एक दिन के लिए मेरे को मालिक बना दे, मैं भी देखता हूँ कैसा काम होता है। तो फिर
0: ठीक है ना, आज के दिन तू बन गया भाऊ, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। ठीक है, चल रे प्रभात, ये जैसा बोलेगा वैसा सुनना है अपने को। साला दिमाग में बहुत टेंशन है, चलो चाय पी के आती है।
1: साले गाड़ी चला बे।
0: साले मैं गाड़ी चलाऊंगा क्या, तू चला बे।
2: भाऊ ने बोला कार चलाने का मतलब चलाने का, चल बे कार चला।
0: भाऊ कहाँ चलेंगे?
1: टपरी के पास चल पहले चाय पीने के लिए।
0: उतरो भाऊ।
1: मेरे बैठने के पहले कैसे बैठा भी तू?
0: अरे सॉरी भाऊ।
1: बैठ अब, जा बे और 3 कप चाय लाना।
0: साले मैं चाय लाऊंगा क्या? सीरियसली
1: साले, हाथ कैसे उठाया तूने?
0: सॉरी भाऊ, लाता हूँ चाय। भाऊ पकड़ो, चाय पकड़ो, बहुत गर्म लग रहा है।
1: और बिस्किट कौन लाएगा?
0: साले वो प्रभात को बोलना, वो लाएगा ना, मेरे को बता रहा है हर एक काम।
1: साले तूने अबे कैसे बोला, तेरी तो।
0: साले उठना बे, 10 बजे तक के सोता है, खेत में जाना है खाद मारने के लिए, उठ बे साले। आज के दिन तू बन गया भाऊ, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। ठीक है,
3: खत्म।
0: साले को एक काम बताया।
4: यहाँ से गुजरने वाली पहली बस में जितनी भी सवारी होगी उसके अंदर आज मैं ये 10,000 रुपए की गड्डी बांटने वाला हूँ। लास्ट में देखते हैं कितने पैसे हमारे पास बचते हैं और कितने हमने बांट दिए। तो अभी बस का वेट कर लेते हैं। अभी बस आ चुकी है भाई, वो रही बस, और उसमें कितनी सवारी है मेरे को नहीं पता है
5: भाई। फुल लग रही है, 100 से ज्यादा ना हो यार, कहीं एक आधे रह जाए और मेरे पीछे पड़ जाए कि भाई पैसे दे।
4: आ जाओ भाई, आ जाओ। बस में सवारी तो बहुत ज्यादा है, देखो भाई क्या बात, हम तो ऐसे ही आए। ये पकड़ो भाई साहब, 100 रुपए।
6: किस लिए दे रहे हो?
4: बस ऐसे ही।
6: ऐसे तो कोई नहीं देता, कोई ना, कोई रीजन।
4: हम तो ऐसे ही देते हैं।
7: अरे बस कर, रुलाए।

0: अंकल जी कोई फर्क नहीं पड़ता अभी।
1: हो गए भाई साहब, पतली सी बची है, गिनते हैं नीचे जाए कितने बचे हैं।
0: कंडक्टर ने क्या किया भाई, बस रोक ही ली। जब तक मैं पैसे बांट रहा हूँ उसने बस आगे चला ही नहीं। तो अभी देखो इतनी सी बची है, अभी इसको चेक करते हैं कितने पैसे बचे हैं अभी मेरे पास, ठीक है। आप कमेंट में बताओ कितने पैसे लग गए होंगे, गैस करके किसका गैस सही निकलता है देखते हैं। 4200 रुपए हमने बस के अंदर बांट दिए, अगली बार बताओ कितने रुपए की गड्डी बांटनी है।
2: मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए।
3: आज तुमसे सवाल पूछूंगी, सही सही जवाब देना। अच्छा ये बताओ पूरी दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन है?
4: तू और तेरी माँ।
3: अच्छा फिर सबसे बुरी औरत कौन है?
4: मेरी माँ और मेरी बहन।
3: अच्छा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर आदमी कौन है?
4: दुनिया में सच्चा आदमी तेरा भाई और तेरे पापा।
3: हाँ सही बोला है। अब सबसे बुरा आदमी
4: मैं और मेरा भाई।
3: दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
4: तेरा मायका।
3: और सबसे बुरी जगह?
4: तेरा ससुराल।
3: अच्छा तुम्हें सिखाते सिखाते 7 साल हो गए, अब मत भूल जाना। आज तुमसे सवाल।
5: फ्रेंड्स आज
6: जिंदगी में पहली बार अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने जा रही थी, लेकिन वहाँ भी मेरा भाई टपक गया। मतलब मैं सिर पर निरमा और चाय पत्ती लेने दुकान अकेले जा सकती हूँ। वेदा हट उधर मेरे को जगह ज्यादा लगती है। मात्र आधा घंटा इंतजार करने के बाद आ गए मेरे दोनों जिगरी दोस्त। याना का जल्दी जल्दी का पाए गिनत गिनत ये था। मैं अपने मित्र गनों के साथ हो गई पीछे शिफ्ट, अब सीधा चलो। बालाघाट पहुँचते पहुँचते हमको हो गई रात। मेले में तो पहुँच गए लेकिन हमारा स्वागत करने के लिए कोई है ही नहीं। क्या मतलब 8 लाख फॉलोअर्स होने का? इसके पहले कसम खाई थी कि ड्रैगन झूला कभी नहीं झूलूंगी, लेकिन एक बार लेती हूँ इसके बाद कभी नहीं झूलूंगी। ये दोनों बैठे हैं मेरे भरोसे और मैं बैठी हूँ भगवान के भरोसे, बचा ले रे बाबा। इसके बाद झूले हमने ब्रेक डांस, आकाश झूला और फिर आ गए मौत का कुआं देख। वेदा ने बोला मेरे को भी 3D वाला चश्मा पहनना है, तो पहना दिए। तो ये तो थर थर कांप रहा है यहाँ पे। इतना सारा टाइम पास और पैसा बर्बाद करने के बाद हमको लग गई थी भूख, तो हम आ गए सीधा खाने। खाना पीना तो हो गया, अब निकलते शॉपिंग पे। मम्मी ने बोली मेले से अचार लेके आना, लेकिन कौन सा लेके आना है बता ही नहीं। भैया एक काम करो पूरे 10-10 रुपए के पैक करके दे दो। ये कछुआ अच्छा लग रहा है, इसको भी ले लेती हूँ। हो गया हमारा मेला घूम के, पूरा सामान लेके निकल गए हम अपने घर। बाय बाय जिंदगी में।
7: गाइस मैं हर्ष पुष्पतोड़े,
8: मैं कल्पिता से।
7: हमारा एक नया गाना हाई लुच की आ रहा है
8: 23 अगस्त को MS म्यूजिक में।

0: बहू ले पकड़ अपने बच्चे को।
1: मम्मी जी 5 मिनट और रख लो, बस ये थोड़े से कपड़े रह रहे हैं, फिर ले लूंगी।
0: मैंने ठेका नहीं उठा रखा, दिन में भी संभालू और रात में भी। अपने बच्चे को खुद संभालो, चल अपनी माँ के पास।
1: संभालो अपने बच्चे को, मैंने ठेका नहीं उठा रखा, दिन में भी संभालू और रात को भी संभालू।
2: आज हम भाई बहन फिर से एक नया चैलेंज लेके आए हैं, और आज का चैलेंज है कि अंधा बनके कौन घर के अंदर जाके खाना खाता है। खाना रखा है इधर में, ये देखो यहाँ पे सब्जी है, ये डब्बे में चावल है, तो हमको यहाँ पे आके खाना है, तो देखते हैं कि कौन पहले जाके खाना खाता है।
3: घुमाना पड़ेगा दोनों,
2: जल्दी घूम।
1: हाँ
2: बस मेरे को घुमा भी तू। हाँ रेडी। हाँ अभी जाऊंगा सबसे पहले।
1: अभी यार
2: ये रोड है,
1: मेरा रोड अभी से गया,
2: रोड के नीचे आ गया मैं तो। अबे चालू कर तू, किधर आ रहा हूँ वे, सही जा रहा हूँ क्या? सही जा रहा हूँ क्या
1: दीवार
2: दीदी, सही जा रहा हूँ क्या?
1: देखो क्या दीवार हमारे कोटे की हुई है, देखो अभी पोस्टर लगा इस पे। ये
2: दीदी मैं आ रहा हूँ कि सही सही? अबे साला कहाँ टकरेगा कि इंसान। हाँ आ गया आ गया
1: भाई, से तो नहीं ये रास्ते पे।
2: सही आ गया लगता है मैं।
4: अबे ऊपर किधर चढ़ रहा है?
2: अबे ये कहाँ आ गया मैं, ये क्या था यहाँ पे?
1: मैं कूलर के पास।
2: हाँ सही आ गया सही आ गया।
1: अच्छा कूलर रखा है पास में तो।
2: ये सही है बे, मैं तो जा रहा हूँ सही सही। दीदे दो कदम
1: सामने। अबे यार रुकना यार, मैं कांप रही हूँ।

0: दो कदम सामने रहने से इंसान जीतता नहीं है, याद रखना। मम्मी हट जा सामने से।
1: घर के अंदर तो मेरे को सब पता है। ये आ गई मैं किचन वाले, मतलब खाना है वहां पे, बस रेक के पास जाना, यहाँ तो मैं नाच भी सकती हूँ।
0: अबे मम्मी, ये दीदी को दिख तो नहीं रहा है? देख भला,
1: दिख नहीं रहा यार।
0: मम्मी दिख रहा होगा, इसको देख ली ईमानदारी से। ये कौन है बे?
1: हटो।
0: ईमानदारी से लेने दे मेरे को।
1: रुकना यार, चावल तो।
0: अबे चावल कहाँ से मिलेगा? चावल इधर आ गया।
1: सब्जी तो मेरे पास है मम्मी। चावल
0: ईमानदारी से आ जा।
1: मम्मी कोठी है, कोठी गीला, कोठी
0: मम्मी उसको मत बतला। अबे हट बे, कौन है ये? अबे
1: अबे चावल, धोखा हो गया मेरे साथ, इसमें चावल अच नहीं है।
0: थाली भी धुलना है। जिसका पहले खाना खा के होगा वो जीतेगा। आज हम

0: आज तो वीडियो शूट करते हुए पुलिस ही आ गई। मैंने चैलेंज दिया कि इस ईंट से एक बार कर्ल करने पर मैं दूंगा 1 रुपए और कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगी, आप कल तक भी कर सकते हैं। इस भाई ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और कर्ल करना शुरू कर दिया। शुरू में भाई की स्पीड बहुत बढ़िया थी, 300 तक पहुंचने में भाई ने सिर्फ 4 मिनट लगाए।
1: 400 तो बजा दे,
2: 400 मतलब भाई साहब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं।
0: बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी,
2: पूरा 400। 5 सेकंड का रेस्ट दे रहा हूँ, लेना चाहोगे?
0: फिर 5 सेकंड की रेस्ट के बाद भाई फिर से शुरू हो चुका था।
2: ऐसा हाथ में दर्द हो रहा है,
1: थोड़ा थोड़ा हो रहा है,
2: थोड़ा थोड़ा ही है। अभी देखो टी शर्ट निकाल के करेंगे, करोगे?
0: लेकिन 500 तक पहुंचते ही भाई ने बोला और नहीं होगी। मैंने बोला 1 मिनट का रेस्ट ले लो, लेकिन भाई ने बिल्कुल मना कर दिया। और इतने में ही पुलिस आ गई, जिन्होंने बोला जाम लगवा दिया, ये रील वील मैं बनवा दूंगा, निकलो यहाँ से। तो मैंने भी भाई को 500 की जगह 600 दिए और वहाँ से निकल लिया। आज तो वीडियो शूट करते हुए
3: तेरी क्या शादी की तैयारी है? ये क्या है?
4: मम्मी हम जाते नहीं बाहर, शाम तक ले आई
5: हमके 200 रुपया दे दे, हमारे आखिर कुछ लौकत नहीं, हमारे आखिर।

0: हम लोग जा रहे हैं गांव, तो अभी पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। ये देखो मामा जी ने छोड़ दिए है, श्रुति दीदी भी चल रही है हमारे साथ गोंदिया। गाइस हमारी ट्रेन बस 2 मिनट में छूटने वाली है, जल्दी से जल्दी। मोहित भाई कहाँ है? जल्दी चलो,
1: चलो जल्दी चलो।
0: फाइनली हमारी ट्रेन छूट गई। ये देखो अभी जस्ट गई, वो देखो दूसरी देखो, नहीं तो अर्ज को बुलाओगे सीधा। फाइनली ये वाली ट्रेन निकल गई, लेकिन ये ट्रेन हमको पहुंचाएगी 10 बजे वो वाली। अभी हम आ गए हैं अपने एरिया में, बोले तो तुम सर, और ये आ गई हमारी कार लेने के लिए। हमारे घर पे आए हैं छोटे छोटे चिल्लर लोग, तो उनके लिए कुछ सामान नहीं ले जाएंगे तो वो लोग हो जाएंगे बहुत दुखी। तो अब आए हैं हम मार्ट के अंदर। ये देखो इतना सारा सामान लिए हमने, ये गुड्डी लिए है, ये बैग लिए है, ये बॉल लिए है, और क्या इनके छोटे लेने के लिए बस हो गए। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए अपने घर। ये देख छोटे चिल्लू लोग अभी देखना कैसे खुश होंगे मेरे को देख के। कहाँ पे छोटे लोग? शंकू के लिए लाया था मैंने ये गुड़िया, दिखा शंकू कैसी दिख रही है। ये देखो कैसी लगी। अभी हो रहा है हमारे घर पे खाने का, भूख लग गई है बहुत जोर के। और ये अभी करते फोन की अनबॉक्सिंग। इसके अंदर रखा हुआ है, ये रहा दे देखो पूरा सील पैक है। अरे चाचा जी ने ला ली एकदम शुद्ध ताजा गोड़, ये देखो। अच्छा सुबह से मम्मी का वेट कर रहा हूँ कि आएंगी और फोन की अनबॉक्सिंग करेंगी। ये देखो रूम में पड़ा हुआ है ये कब से, ये चिट्ठी तक नहीं फटी है। पर हमारे घर की छोटी वाली मेहमान जा रही है गांव, और मम्मी तू ऊपर चल अभी अनबॉक्सिंग करने के लिए। पहले जा रही है क्या माँ? भाई बाय
2: बाय बाय,
0: चल जा। फाइनली मेरी माताजी पधार गई है आईफोन 17 प्रो मैक्स ओपन करने के लिए। आ गई मम्मी। मम्मी ये रहा फोन, आज का शुभारंभ करेंगी मेरी मम्मी।
3: तो गाइस फाइनली फोन हो रहा है अभी अनबॉक्स।
0: नीचे वाला भी मम्मी, नीचे वाला ये वाली भी फाड़, चल निकाल उसके अंदर से पढ़। ये हो गया मेरी मम्मी। मम्मी उसको भी निकाल, नीचे से नीचे, अरे निकाल दे ये वो बटन दबा के रख,
4: बताएंगा तो
0: पर। हाँ हो गया हो गया। मम्मी ये वाला फोन
4: ठीक है, चलाते आएंगा?
0: आएगा ना, वो सीख जाएंगे मम्मी।
4: सिखा देना जब आएंगा, नहीं तो ये चलाते नहीं आता।
0: ये वाला फोन दे दूंगा मैं अपनी मम्मी को,
4: ये फोन रखूंगी तो लोग क्या बोलेंगे।
0: तो अब मैं करता हूँ डाटा ट्रांसफर, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी से फोन ओपन हुआ, कल से आया है वो। हम लोग जा रहे हैं,
5: तो हमारे यहाँ अभी है धूप का कहर। तो ये देखो ये लोग रूम के अंदर वीडियो बना रहे हैं अभी एसी में। और कौन तो वाला है जरा बता, मारू मारू
0: मारू
5: नहीं
0: मारू
5: मारते
0: मारू क्या
6: मार दे
0: मार दे
5: बहुत जोर से। और ये लोग मेरे को नहीं रख रहे ये वीडियो में, क्योंकि मैं हंसूंगी। मारू
0: तू, चल एक बार रिएक्शन देख के बता ठीक है। प्रभात तू इसको वीडियो पकड़। हाँ चल ले अभी देखते मैं। मारू
6: मत मार,
0: मारू
6: मत मार,
0: मारू
6: मार दे
0: ऐसी हंसेगी, इसलिए इसको वीडियो में दूर दूर तक के नहीं रखना।
5: नहीं हंसती ना, वीडियो के समय सीरियस हो जाऊंगी।
0: चल ले सीरियस हो जा, वीडियो ही बन रहा है समझ जा। चल ले वीडियो बन रहा है,
5: मैं बोलती
0: हूँ। प्रभात इस पे जाएंगे तो मारू बोलना ठीक है।
5: मारू मारू
6: मत मार,
5: मारू
6: मत मार,
5: मारू
6: मार दे।
5: किसी चोर आना मार। चलो कोई बात नहीं, ऐसे झापड़ पड़ते रहते। तो हमारे यहाँ

0: परेशानी हो।
1: भैया 20 रुपए की चीनी दे देना।
2: हाँ?
1: अभी देता हूँ।
3: अभी मैं अपने घर पे नीचे बैठी हुई थी तब।
1: भैया 20 रुपए की चीनी दे देना।
2: हाँ?
1: अभी देता हूँ।
4: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
2: रुको जरा, सबर करो।
1: हाँ भैया मीठा है, दे दो।
5: एक सेकंड।
1: दे दो। अबे यही 20 की थी।
6: माता
3: अभी मैं अपने घर पे नीचे बैठी हुई थी तब मेरे भाई का कॉल आया कि दीदी ऊपर के रूम में आ जा, अपन मूवी देखेंगे। पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे को मूवी देखने बुला रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आई तब पता चला कि सच में मूवी देखने बुला रहा है। और लगा के भी रख दिया है मूवी। ये देखो मूवी का नाम क्या है, सुपर 30। अच्छी नहीं होंगी ना वही नहीं देखूंगी।
6: अरे अच्छी है इसलिए तो बुलाया कि नहीं तेरे को।
3: मोटिवेशन वाली है क्या? पढ़ाई वढ़ाई वाली तो नहीं है।
6: वो बंदा क्या करता है, उसके पास 30 बच्चे ट्यूशन आते हैं, तो 30 के 30 बच्चे कोई तो बड़े से कॉलेज में लगते हैं। वैसे मैंने भी नहीं देखा हूँ, बस मैंने सुना हूँ, पर मूवी अच्छी है, दोनों लोग साथ में देखेंगे अपन।
3: दोनों पढ़ाई करने जाएंगे, दोनों कॉलेज जाएंगे।
6: सही बात है, अगर ये मूवी देख ली ना तो मैं फिर से कॉलेज जाना चालू कर दूंगा भैया।
3: मैं भी पढ़ाई चालू करूंगी, बहुत रोज लॉन्ग ब्लॉग आएंगे, फिर मैं कॉलेज जाऊंगी। अभी मैं अपने घर।
7: क्या कोई 10,000 रुपए के लिए अपनी शर्ट फाड़ सकता है? पहनी हुई आपको बड़ी मार्केट में अपनी शर्ट फाड़नी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब मैं सिर्फ 400 रुपए से शुरू करने वाला हूँ। भाई साहब 400 रुपए के लिए अपनी शर्ट फाड़ सकते हो, एकदम टुकड़े टुकड़े करनी है आपको। पहने नहीं रखी है तो 400 रुपए में अंदर वाली फाड़ दो।
8: 400 महंगी है यार भाई,
7: 400 महंगी है।
8: जोरा की है यार,
7: जोरा की पहनता है भाई, क्या बात है यार, ब्रांडेड आदमी है। 500 रुपए के लिए क्या आप अपनी शर्ट फाड़ सकते हो? स्वेटर है ये फाड़ दो। तो
9: स्वेटर घर पे भी पहननी है फिर?
7: अच्छा पहननी है तो 500 रुपए में तो आ जाएगी, बढ़िया सी
9: आ जाएगी।
7: और क्या,
9: कितनी फाड़नी है
7: टोटल से? आप नहीं फाड़ सकते?
9: नहीं।
7: 600 रुपए के लिए क्या आप अपनी शर्ट फाड़ दोगे? टी शर्ट 700 रुपए के लिए आप फाड़ दोगे?
9: नहीं ले आऊं, ये 1100 की।
10: भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई।
7: आप फाड़ दोगे 800 रुपए के लिए?
10: ना भाई, कौन बड़ा
7: नहीं। कितने पैसे लगेंगे? 1000 रुपए दूंगा आपको अपनी शर्ट फाड़नी है।
10: फाड़ दूंगा लिया।
7: फाड़ दोगे 1000 रुपए में?
10: 1000 रुपए में के टोटा अपने।
7: अरे भाई कहां फंस गया, बोलना क्या है, सीधा फाड़ो फिर। ये लो
10: और फाड़ू?
7: पूरी फाड़नी है।
10: फाड़नी है 1000 रुपए में?
7: 1000 रुपए ले रहे हैं भाई, फाड़ रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो, पहनने की थी ये। पैर रख रख के फाड़ रहे हैं, क्या करके छोड़ोगे
10: भाई? 1000 रुपए ले रहे हैं।
7: 1000 रुपए लोगे? नहीं दूं तो
10: ना देगा तो भी टाड़
7: है। टाड़ है ये लो।
10: ए भाई ए, कपड़े फाड़ रहे हैं, पागल हो गए।
7: ये पकड़ो आपके 1000 रुपए। वैसे ये शर्ट कितने की थी?
10: ये थी 300
7: की। 700 रुपए का मुनाफा, क्या बात है। क्या कोई 10,000?
11: ये गाना मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए।

0: ये मैं
1: तो गाइस कुछ दिनों पहले मेरे भाइयों ने यहाँ पे एक पोस्टर लगवाए थे ये देखो, और अब कल है होली तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पन्नी लगा रहे ताकि हमारे मोहल्ले के डेंडू बच्चे कुछ यहाँ पे कलर माहूर वगैरह ना डाले। सेफ्टी है ये, सेफ्टी क्या पता आए और हैप्पी होली।

0: लगता है आंटी नारी दिख रहे हैं।
1: क्यों, जरूरी नारी होगी, कुछ और भी तो कर सके।
0: ना ना ना, नारी होगी पक्का, क्योंकि अगर बाहर होती तो थोड़ी बहुत आवाज मारती ना।
1: हाँ तो पूजा भी तो कर सके, और कहाँ पर तो रोटी पूरी होवे।
0: रोटी तो ना पूरी होगी। ले आंटी, आगे आंटी से पूछ ले।
2: आ गए भैया।
1: आ गए।
3: फायदा हुआ तेरे पढ़ाने लिखाने का।
0: 20 साल में आता तुमने बताई छाए को क्या कहेंगे इंग्लिश में?
3: तो तूने स्कूल में ना सीखी।
0: छाए को कहाँ लेने देना स्कूल में?
3: तो फिर काहे का लेने देना स्कूल में, जब तुम पे अंग्रेजी बोलनी ना आ रही, पहचान में आग लगाई जा रही हो।
4: अरे तुम रुको यार,

0: ये एक गुलाब जामुन खाने पर मैं अगर 50 रुपए दूं तो कोई कितने गुलाब जामुन खा सकता है?
1: मैं खा सकूं भाई 10 ही है।
0: 10? अगर 10 गुलाब जामुन खा गए तो मैं दूंगा आपको 500 रुपए। अगर 10 से पहले रुक गए तो कुछ भी नहीं दूंगा। जैसे आपने 15 गुलाब जामुन भी खाए तो भी मैं आपको 750 रुपए दूंगा। करो शुरू भाई साहब। पहला गुलाब जामुन, ये तो एक साथ ही लपेटे जा रहे हैं भाई। मतलब पिछली बार क्या हो रहा था कि लड्डू को खाने धीरे धीरे खान, इतना जल्दी करोगे यार? बोलने तो दो कुछ।
2: चुपचाप बैठ जा।
1: स्वाद आ रहे हैं?
0: अभी तो स्वाद आएंगे ना, अभी तो धीरे धीरे स्वाद सजा में बदल जाएगा, आंखों से पानी बहेगा।
3: ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
0: ओ, ये चौथा है भाई साहब। मैं तो ऐसे ही करता था, इतनी जल्दी तो गोली से बंदूक नहीं निकलती।
2: क्या बोला तूने
0: भाई साहब? क्या बात है यार, इधर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 5 रसगुल्ले लाओ, इधर ही ले आता हूँ मैं। और ये छठा भाई साहब, स्वाद ले लेके खा रहे हैं भाई साहब। छठा रसगुल्ला चल रहा है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, एक आधा खाना है क्या?
4: हाँ,
0: तो वहाँ दुकान है, वहीं से ले आना। और ये सातवां रसगुल्ला
1: है तो बड़े बड़े यार, मैं बड़े बड़े देख के लाया था।
0: ये आठवां गया और नौवां उठ गया, मैं सदमे में गया।
1: ये अगर भाई साहब 2 रसगुल्ले और खा लिए तो 500 तो लग गए। उसके बाद में मशीनरी रुकेगी या नहीं वो भी मेरे को नहीं पता।
5: बीपी की गोली ले लो।
0: बीपी की गोली
6: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
0: अभी तो मेरी शुगर बढ़ रही है।
7: क्या लग रहा है, 10 से ऊपर जाओगे क्या?
0: अरे हार मान लिया आपने तो। भाई साहब एक ऑफर दे रहा हूँ मैं आपको, ये 10वां रसगुल्ला है, इसको कंप्लीट करके एक रसगुल्ला खाने पर 100 रुपए दूंगा। अभी बताओ खाओगे?
8: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
0: ये 11वां, मैंने क्यों बढ़ाए भगवान? और खाओगे? अगर मैं एक रसगुल्ले का 200 रुपए दूं तो खाओगे एक? ये तो मैं मजाक कर रहा था भाई साहब। मैं अगर 500 का ऑफर करूँ ना, ये सारे को लपेटेंगे। ऊपर खत्म।
9: बहन डर गई, बहन डर गई।
0: और खाओगे भाई साहब? ये 800 रुपए आपके।
10: मुझे फर्क नहीं पड़ता
11: बैगन।
0: ये एक गुलाब जामुन, इस बॉक्स के अंदर आपको एक पैर के ऊपर खड़ा रहना है। हर एक सेकंड खड़े होने के मैं दूंगा आपको 2 रुपए। लेकिन इन लाइन को भी टच नहीं करना है, लाइन को टच कर दिया तो डिस्क्वालीफाई। मिनिमम 5 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा, हर सेकंड के 2 रुपए हैं।
3: मैं खड़े हो जाऊंगा।
0: स्टार्ट टाइम हो चुका है आपका शुरू। इसमें 10 सेकंड हो गए अभी आपके।
3: नहीं तो धरती से हिला हुआ है
0: भाई साहब। बोल रहे मैं धरती हिला रहा हूँ भाई, मैं धरती हिला सकता हूँ?
12: तेरे बस की बात नहीं।
0: 3, 2, 1 स्टार्ट। टाइम हो चुका है आपका शुरू। 20 सेकंड हो चुके हैं आपके। एकदम ध्यान केंद्रित नहीं बोल सकते हो आप? बोलोगे नहीं भाई साहब? ने मौन व्रत भी किया है साथ में। 42 सेकंड। क्या बात, कॉन्सेंट्रेट कौन से?
13: इंग्लिश बोली नहीं जाती।
0: 1 मिनट कंप्लीट आपका। 20 मिनट खड़े हो गए तो 2400 रुपए दूंगा पूरे भाई। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत, बस बस बस ब्रेक मारो। रुक गई गाड़ी,
14: बीच में
0: झांसी की रानी खड़ी है देखो।
15: भाग भाग रे भाग फिरंग,
14: मैं तो लाती भी मार दूं। मैं पार्टी पर तो एक नंबर की बढ़ाई मालिक सुन ली तो।
16: ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है।
0: 10 मिनट खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए आपको।
14: ये बात 5 मिनट की बात हो यार, स्वाद नहीं रहे। 5 मिनट तो पुलिस वाले कौन खड़े होकर इतनी बारे तो पर।
0: 1 सेकंड के 2 रुपए हैं।
14: अरे तू देख यार क्या बने, उतना दे दादे।
0: 5 मिनट मिनिमम खड़ा होना पड़ेगा। मित्र मित्र थोड़ी है, तो पितर है। भाई साहब डंडा हो ना हाथ में लपेट देख दो।
3: ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है?
14: मुंह करना देखा।
0: 4.5 मिनट 5 मिनट आपके कंप्लीट। मतलब 600 रुपए तो आपके हो गए। 1 मिनट के 120 रुपए हैं। 10 मिनट हो गए तो डबल दे दूंगा, 1200
14: दे पा तो बल्ले बल्ले
0: 1200 लेके जाओगे? मतलब
14: सला तो है, देखो के पैर लो।
0: 6 मिनट कंप्लीट।
14: थोड़ा कप्पा ना
0: कहां
14: तो पैर कप्पा, तू कौन कप्पा?
0: पैर दिक्कत नहीं हो, छोड़ दे भाई पंडा।
1: भाई बहुत पैसे लगने वाले हैं।
0: 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अरे भाई पैर तो इस पे खड़े हो, ठीक उसको कर रहे हो।
14: पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी।
0: पक्की बात है?
17: दिल गार्डन गार्डन हो रहा
14: है। अरे ना करो एक बार फोन मेरा बाप।
1: 10 मिनट करेगा, पूरे 1200 लेगा भाई, पक्का लग रहा है मेरे को।
0: गजब का बंदा मिला है हमें। आई लव यू ब्रो। 8.5 मिनट हो गए हैं।
1: अरे पैर दुखेंगे रात को, छोड़ दो।
14: तेरे दुखो मेरे तो क्या दुखो।
0: 15 मिनट कर दोगे?
14: अरे कर कर दिया।
0: 9 मिनट 40 सेकंड। 10 मिनट होने में 10 सेकंड और बाकी है।
1: 1200 तो हो गए भाई।
14: और कर लोगे?
0: मेरे हिसाब से 20 मिनट खड़े हो जाओ।
1: ये बात तो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, वैसे दर्द हो रहा है मेरा।
0: अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था यार। ये पकड़ो आपके 1200 रुपए, ये पकड़ो आपके 50 रुपए।
14: इस पैर पे मारा ट्राई,
0: इस पैर पे और खड़ा होना है। हाँ रात को होना। इस बॉक्स के अंदर आपको एक पैर।
18: चलो बे कल राखी आ गई, साला दीदी के लिए कुछ गिफ्ट लेके लाना पड़ेगा यार।
19: भाव हमारा भी पेमेंट कर देता तो बड़ा अच्छा हो जाता, मेरे को भी दीदी के लिए कुछ गिफ्ट लेना है।
18: क्या लेगा तू भी अपनी बहन के लिए?
19: सोच रहा हूँ एक सोने की चेन ले लूँ।
18: सोने की चेन? और तू क्या लेगा अपनी बहन के लिए?
19: iPhone 15 Pro Max।
18: बबू चलो देख लेते फिर तुम्हारा क्या हिसाब है। तो ये रहा तुम्हारा इस हफ्ते का हिसाब किताब। इस हफ्ते के शुरुआत में ही तुमको एडवांस पैसे दिया मैंने 650 तेर को और 650 तेर को। और सालो उस दिन मैंने गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल भर के लाया, 10 रुपए का पेट्रोल खर्च हुआ मेरे हाथ से। तुम लोगों ने गाड़ी ले गए पूरा 90 रुपए का पेट्रोल खत्म। 45 रुपए तेर को लगेंगे, 45 रुपए तेर को लगेंगे, ये देख पूरा लिख के रखा हूँ मैंने।
2: गाड़ी तो इसने ज्यादा चलाया।
18: वो मैं नहीं जानता, तुम साथ में गई ना, बस बात खत्म। उस दिन तुम सुबह सुबह मेरे घर में आए, मेरे घर में बना था आलू पोहा, तेरे को एक प्लेट दिया था, तेरे को एक प्लेट, 20-20 रुपए उसके कटेंगे।
19: जब पैसे काटना होता है तो पोहा खिलाता क्यों है?
18: मेरे को बता, तू दुकान में जाके पोहा खाता तो तेरे को पैसे नहीं लगते?
19: लगते।
18: हाँ तो मेरे घर में नहीं लगेंगे क्या?
4: क्या बोलूं मैं इस पे?
18: उस दिन जब अपन बेड लाने गए तो तुमको पूरा सामान भरना था ना ट्रैक्टर में, एक बक्सा तुम वहीं पे भूल गए। उसको लाने के लिए मेरे को कितने का खर्चा आया मालूम है? 500 रुपए का। तो 250 तेरे कटेंगे, 250 तेरे कटेंगे। संतोष भैया उस दिन तेरे को मैंने दिया था जूते मेरे सफेद वाले पुमा के 4000 रुपए वाले, तो मैंने बोला था तेरे को किराया लगेगा, तो हाओ भाओ दे दूंगा बोला था। कितना रुपए किराया मालूम तेरे को? 50 रुपए। और प्रभात तेरे को उस दिन बोला मैंने कि भैया पानी बहुत आ रहा है, आज गाड़ी मत ले जा पूरी गंदी होएंगी। तू ले गया और पूरी भरा के लाया। उसको धुलने के लिए मेरे को कितने रुपए लगे मालूम है? 80 रुपए। संतोष ये तेरा हिसाब देख ले बे, 650 रुपए एडवांस, 45 रुपए पेट्रोल के, 20 रुपए नाश्ता, 250 रुपए वो वाला किराया और 50 रुपए जो जूतों का किराया बोला था ना वो वाला, तो तेरे होते 1015 रुपए इस हफ्ते के। 7×150 1050 रुपए होते तेरे। वहां से माइनस कर देंगे अपन 1015 रुपए। और तुम्हारी अभी 2 दिन पहले पेमेंट बढ़ाया हूँ, तो 2 दिन के तेरे 20 रुपए अलग से जोड़ेंगे। तो ये तेरा पूरा हिसाब काट पीट के निकल रहा है 55 रुपए। ये ले पे तेरे पैसे ले और तेरा हिसाब चुपका कर पहले। अब प्रभात तेरा देख ले भैया क्या बनता है हिसाब। तो तेरा हो गया 1045 रुपए इस महीने का, 7×150 1050 रुपए होता है, माइनस करेंगे 1045 रुपए। और 2 दिन पहले तेरी पेमेंट किया था मैंने 170, तो वो 40 रुपए, 40 रुपए एक्स्ट्रा 2 दिन के, तो तेरे हो रहे भैया 45 रुपए। ये ले तेरे 45 रुपए। चलो हो गया भैया जाओ। अभी क्या ले रहा था तू? आईफोन? तू ले रहा था आईफोन? इस जन्म में नहीं हो सकता तेरा आईफोन, अगले जन्म में लेना।
5: खत्म।
18: चलो बे।
11: मैंने अपने घर पे लगा लिया सोलर पैनल।
18: मैंने अपने घर पे लगाया है 5 किलोवाट का सोलर पैनल और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे इसमें कितना खर्चा आया। अगर आप भी अपने घर पे लगाना चाहते हो तो मैं पूरी आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कैसे काम करता है, कैसे लगाना है, सब कुछ पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये 5 किलोवाट का है तो इसमें पूरे 9 पैनल है उधर से लेके इधर तक के, और इसकी लंबाई है 27 फीट। एक पैनल जो है ये 3 फीट का है। मेरे घर पे लगी है पूरी 9 पैनल क्योंकि मैंने लगाया है 5 किलोवाट का। मेरे घर पे कैसा लंबाई ज्यादा थी इसलिए मैंने लंबा लगाया। अगर आपके घर पे चौड़ाई ज्यादा है तो आप चौड़ा भी लगा सकते हो, चौड़ा वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है। जब से मैंने अपने घर पे एसी लगाया तब से 5,000-5,000 रुपए बिल आता था और मेरे घर का लोड भी बढ़ गया था क्योंकि जो हमारे घर पे मोटर है, एक कुआ है, तो वहां पे 0 की मोटर लगी हुई है, वो बहुत ज्यादा बिजली खपत करती है, तो उसके कारण कैसा मेरा लोड बहुत ज्यादा हो गया था। तो मैंने लगाया 5 किलोवाट। अगर आपके घर पे बिजली का उपयोग कम है तो आप 3 किलोवाट भी लगा सकते हो। ये पैनल है अडानी कंपनी का और एक पैनल है 545 वाट का, मतलब 2 पैनल हो जाएंगे 1.1 किलोवाट। तो ऐसी 9 है हमारे पास। इसको लगाने में मात्र 1 दिन का समय लगता है। मेरे घर पे सुबह सुबह सामान आया,
11: सामान को उतारे और सारी टीम लग गई काम में क्योंकि दिन भर से पानी आ रहा था तो लाइट आ रही थी जा रही थी, इसके कारण बहुत दिक्कत हो रही थी। छत पर सोलर पैनल का स्टैंड बनाना मुश्किल था इसीलिए छत का नाप लिए और नीचे ही लोहा काटने लग गए। 6 लोगों की टीम थी तो काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, कोई लोहा काट रहा था, कोई मीटर फिट कर रहा था, तो कोई छत पर छेद कर रहा था। स्टैंड बन के तैयार होने के बाद सारे पैनलों को ऊपर चढ़ाए और करने लग गए उसको फिट। मुझे लगता था सोलर पैनल से जो भी बिजली बनती है उसको डायरेक्ट हम अपने घर में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी सोलर पैनल से बिजली बनती है वो पहले ग्रिड में जाती है और जो ग्रिड से बिजली आती है वो हम यूज करते हैं।
12: यह है स्मार्ट मीटर जो दोनों बिजली की गणना करता है, कितनी बनी है और कितनी हमने खर्च किए हैं।
11: अगर हमारे सोलर पैनल ने 1 दिन में 10 यूनिट बनाया और हमने 9 यूनिट खर्च किए तो हमारा 1 यूनिट फ्यूचर के लिए सेव हो जाता है।
18: अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए कितने का खर्चा आया। देखो 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए पूरा लगता है 3,30,000 रुपए, लेकिन अभी कोई सूर्य घर मुक्त बिल योजना है जिसकी तहत 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, तो वो सब्सिडी काट के मुझे टोटल खर्चा आया है 2,32,000। और हाँ, अगर आपका घर छोटा है या आपके घर में कम लोड है तो आप लगा सकते हो 3 किलोवाट का, उसमें आपका एक।
4: ज्यादातर हम घर में दाल बनाते हैं पर रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आता है, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का बनाने का तरीका बताऊंगा और इस तरह से

0: हेलो प्रभात।
1: हाँ दीदी।
0: कहाँ है तू?
1: इधर बाहर आया था कुछ काम से, बोलना।
0: वो घर पे पोताई चल रही है तो थोड़ी सी मदद करने आ जाता बोल रही थी।
1: तूने मुझे क्या नौकर समझ के रखी क्या?
0: अबे प्रभात रुक, मेरी सहेली का फोन आ रहा है 2 मिनट। उसको मैंने पोताई पे बुलाई थी ना, तो शायद आ रही है।
2: उसको पूछ कितने बजे तक आ रही है।
0: कितने बजे तक आ रही है तू?
3: आज तो नहीं आती लेकिन कल आऊंगी।
2: काम कर तो अपना।

0: गाइस न्यू सॉन्ग कैसा लगा कमेंट करके बताना। देखो भाई ये लोग आए थे कहाँ से आए यार भैया?
1: आरंबा जिला।
0: आरंबा जिला कहाँ पता है?
1: संभाजी नगर।
0: ये महाराष्ट्र पुणे के पास। ये देखो 700 किलोमीटर दूर से आए हैं। ये कल रात में निकले थे बोलते हैं। कितने लोग? 4 लोग आए हैं। एक भाई है, वो एक है और इन्होंने लाए हैं। ये बालाघाट जा रहे थे ना? बालाघाट जा रहे थे क्योंकि मेरे गांव का नाम ज्यादा लोगों को नहीं पता है तो सीधा बालाघाट ही जाते हैं। लेकिन मेरा गांव गाइस बालाघाट से 75 किलोमीटर दूर है। अगर किसी को आना है ना पहले अच्छे से पता कर लेना आसपास से। मैं बताता नहीं हूँ, पहले पता कर लेना कि मेरा गांव है कहाँ पे। तुमसर आना ठीक है, बालाघाट मत आना, तुमसर के पास में है। तुमसर से 28 किलोमीटर दूर है। फिर वहां से किसी को भी पता कर लेना तो आपको बता देगा। देखो भाई ये लोग आए थे
2: गाइस। लोग कहते हैं कि कैमरे के सामने बैठने से पेट नहीं भरता, वीडियो बनाने से घर नहीं चलता। ये देखो इस महल को।
0: जो लोग मेरे वीडियो एकदम स्टार्ट से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मेरे पास एक पहले लाल शर्ट था और वो लाल शर्ट पहन के मैं मशीन वगैरह चलाता था। मैंने वो फिर वो फट गया मेरा शर्ट, तो वो शर्ट लेने के लिए मैं बहुत सारी दुकान घुमा कि वैसा ही शर्ट मिल जाए, शर्ट मिल जाए, पर वैसा शर्ट मेरे को मिला नहीं। लेकिन मेरे घर पे एक कहाँ रख गया, हाँ मेरे घर पे एक चादर है यहाँ पे बिछाने के लिए। एक बेडशीट थी, ये देखो ये बेडशीट है। ये सेम टू सेम वैसी है, थोड़ा सा डार्क कलर है, बाकी ये वैसी ही है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, दिख रहा होगा शायद, ये देखो। इस टाइप का मेरा एक शर्ट था, वो बहुत सही था और वो बहुत वायरल भी हो गया था। तो मैं सोच रहा हूँ इसका एक शर्ट सिलवा लेता हूँ यार, तो कैसा अपना कमबैक हो जाएगा फिर। तो ये देखो ये मस्त है, इसको अभी लेके जाता हूँ, मम्मी की परमिशन लेता हूँ, सिलाने देती कि नहीं पता नहीं, फिर कमबैक होएगा अपना शर्ट। सिलाने दे देगी वैसे, अभी खाना वाना चल रहा है तो मैं पूछता हूँ। मम्मी इसका मैं शर्ट सिलाऊ क्या? अरे चद्दर नहीं है मम्मी, वो जो मेरा पहले शर्ट नहीं था क्या? हाँ। वैसे कलर है वो? हाँ। वो लाल शर्ट था मेरा। हाँ। वैसा है कि नहीं देख?
3: हाँ,
0: कलर भी वैसा है, लाइन भी वैसी है।
3: हाँ।
0: तो इसका एक शर्ट सिला लेता हूँ। मम्मी तो सिलने बोल रही है, भैया हो गया काम, आज बन गया हूँ मैं कैमरा मैन इन भैया लोगों का, क्योंकि इनको लेना है दीदी के साथ फोटो। दीदी ये आ गई सेलिब्रिटी मैडम, चलो जाओ इधर से हटा। इधर धूप से अच्छी नहीं है यार ये लो, बाकी वो टेढ़ी वाली अच्छी है। ये शर्ट लेके जा रहा हूँ मैं नाप लेने के लिए, इसके बराबर का इसका बना लूंगा। तो ये ला लिया मैंने मिस्त्री के पास कपड़े, टेलर साहब हमारे गांव के। ये है चादर, ये चादर का बनाना है शर्ट, ये वाले नाप का बन जाएगा क्या? वो कैसा है, मैं पहले वीडियो बनाता था तो ऐसा मेरे पास कपड़ा था, तो अब ये चादर मिल गया मेरे को उसी कलर का, तो इसका शर्ट बनाना है। हाँ बेडशीट भाई दे दिया हूँ मैंने कपड़ा, अब 2 दिन में सिल के हो जाएगा बोल रहे हैं, परसों हो जाएगा ना पक्का। जो लोग मेरे
2: आपको 500 रुपया चाहिए या राशन चाहिए?
4: बाबू हमको राशन चाहिए बाबू, पैसा लेकर क्या करेगा बाबू?
2: ठीक है चलिए मेरे साथ अंकल, आपको मिलता है 1 मिनट का टाइम, आप 1 मिनट में जितने भी सारा सामान उठाएंगे उसका बिल मैं पे करूंगा। ठीक है
4: बाबू,
2: स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट।

0: अंकल स्टॉप, आपका टाइम अब खत्म होता है, ठीक है?
1: आओ
0: अंकल, और भी कुछ चाहिए?
1: नहीं बाबू,
0: सब हो गया ना?
1: हो गया।
0: अंकल ने तो एक मिनट के अंदर काफी सारा सामान उठा लिया है। अगर इस वीडियो से मेरे 2 लाख शेयर कंप्लीट हो जाते हैं तो अंकल को मैं 3 मिनट का टाइम दूंगा। चलिए अब देखते हैं इसका बिल कितना होता है। कितना बिल हो गया अंकल?
2: 5899।
0: आपको 500 रुपया चाहिए या राशन चाहिए?
3: हाँ बेटू, इधर देखो, इधर देखो।
4: खेती किसानी में लग गया मेरे को 50,000 रुपए का घाटा, इसलिए ले लिया मैंने ईटा भट्टी का ठेका, वो भी प्रभात सिर पर तेरे भरोसे।
5: और वो मेरे भरोसे क्यों नहीं?
4: क्योंकि तेरे को धूप से एलर्जी है ना बेटा, तू काला हो जाता है। तू घर के काम संभालना और प्रभात तू ईटा भट्टी के।
5: ठीक है फिर जा रहा हूँ मैं घर।
4: अबे रुक बे, अभी कहाँ, अभी तो ठंडी का सीजन चल रहा है ना, चल बे साले काम पे। एक दिन में बनाना है अपने को 10,000 ईंटें, 5,000 ईंटें तू बनाएगा और 5,000 ईंटें तू बनाएगा। अगर एक ईंट भी कम बनाए ना तो भयंकर मार मारूंगा, नहीं तो सालों तुम्हारे पैसे काटूंगा। चलो लो ये मसाला बना देता हूँ मैं, तुम भगवा भरो साचा में और ईटा बनाओ। ये बन गया मसाला, चल ले ये मसाला साचा में डाल। अब रुक रुक रुक रुक, साले रेट डालना उसमें पहले बे, चिपकेगा नहीं क्या? रेट डाल, रेट डाल, खाली कर। चल ले अब डाल मसाला उसमें, ये ले जा उधर, सूखा क्या, सूखा क्या जल्दी।
6: क्या बेहतरीन ईट बनाया भाई प्रभात, तेरे को तो शाबाशी मिलना चाहिए। इधर आ, इधर आ, ऐसा झुक, इधर का मुंह करके बहुत साले यहाँ से वो ईटा ले चले जाके उधर रख दे, तेरे को नहीं जमता ईटा बनाने वाला काम। संतोष तू कैसे बना रहे बेटे?
7: तू अकेला ही बनाएगा और तेरे को 200 रुपए दूंगा।
5: भाई ईट के ऊपर पटेल क्यों लिखा है?
6: अबे जो अमीर लोग रहते हैं ना उनके नाम के पीछे में पटेल लगता है।
5: भाव तो तू कौन से एंगल से अमीर है?
6: तो तेरे को और मेरे को पता है कि मैं पटेल नहीं हूँ, लेकिन लोगों को तो पता है कि मैं पटेल हूँ। साले काम करना भाई।
5: सॉरी भाऊ,
6: मेरा दादा भी गरीब था फिर भी पटेल था, और मैं भी हर्ष गरीब पटेल। ये साला काम कर रहा है कि नहीं भी ढंग से?
5: भाऊ तो 2 चिट्ठी ले जा रहा है।
6: बे ओए साले, तेरी हालत तो वो लेडीजों से बदतर है बे, वो 8-8 ईंटें ला रही और तू साले सिर्फ 2 ईंटें ले जा रहा है।
5: अरे तो भाऊ वो कितने भी ईंटें लेके जाए उनकी मर्जी।
6: साले क्या उनकी मर्जी, तू 8 ईंटें ला बे, 8 ईंटें ले साले।
5: 2-2 ईंटें ले जा रहा है
6: तू, काम पे करना बे इधर बे, उधर क्या ज्ञान देने जा रहा है क्या? खेती किसानी में लग

0: मैं आपको दिखाऊंगा हमारे घर में मेरे दादाजी के जमाने में क्या क्या चीजें थी। वो चीजें अभी भी हमारे घर पे रखी हुई है, तो मेरे को लगा कि वो सारी चीजें आपको दिखाना चाहिए। वैसे तो हमारी बहुत सारी ऑडियंस गांव की है जिन्होंने ये सब चीजें पहले देखी होगी, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो सीमेंट के घर में रहते हैं जिन्होंने ये सब चीजें नहीं देखे। तो वैसे भी हमारी लास्ट जनरेशन है जिसमें ये सब चीजें देखने को मिलेगी, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और मेरे दादाजी बताने वाले हैं उन सब के बारे में। बाबा बता पाएंगा? बताएंगे ना?
1: हाँ।
0: चलो फिर, तो जैसे ही घर के अंदर एंटर करो तो ये दरवाजा मिलता है जो दादाजी बाबा किसने बनाया था?
1: ये बहुत पुराना जमाने का बनाया हुआ।
0: तो बनाया किसने? तुमने बनाया कि तुम्हारे पापा ने बनाया?
1: नहीं, बड़े ने बना के लिया।
0: अरे तो बड़ा ही मतलब तुम्हारे जमाने में बना कि दादा तुम्हारे पापा जी के जमाने में बना?
1: मेरे पापा जी के जमाने में बना।
0: यानी कि 100 साल तो हो गए होंगे कम से कम।
1: 100 साल हो गए इसको।
0: हाँ, तो ये देखो 100 साल पहले दरवाजा बनाते थे तो ये देखो इस टाइप का रहता था, और आजकल के दरवाजे में एक कब्जा लगा होता है जो ऐसे में खुलता रहे, ऐसे चालू बंद, तो उसको कब्जा बोलते हैं। लेकिन ये कब्जा उब्जा नहीं है, ये कुछ ऐसी एक रॉड है उसमें खिल्ले ठोके हुए हैं। तो इस टाइप के दरवाजे थे पहले। इसके बाद दूसरी चीज है ये देखो, इसको बोलते हैं जाता। बाबा जाता बोलते हैं इसको?
1: हाँ, जाता बोलते हैं।
0: इसपे क्या क्या करते थे?
1: यहाँ पर गेहूं कूटते थे, चावल कूटते थे, पीठ बनाते थे, रोटी बनाते थे गेहूं की।
0: अच्छा, गेहूं की रोटी नहीं, रोटी के लिए आटा बनाते थे। अच्छा, ये देखो ये इसमें ऊपर से यहाँ पे गेहूं डालते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं तो इससे आटा बनता है, तुवल डालो तो तुवल की दाल बनती है। हमारे घर के अंदर ये इस टाइप के बहुत सारे छेद बने हुए हैं। ये देखो ये एक है, यहाँ पे तीन तीन बने हुए हैं। तो बाबा बता, ये जो छेद बने हैं,
1: हाँ,
0: ये काय के लिए बनाते थे पहले?
1: ये ऐसा कुछ छोटा जो बड़ा सामान रखने के लिए।
0: अच्छा, ये जैसे कि ऐसे छोटे छोटे सामान, पैसे वैसे रखने के लिए।
1: हाँ,
0: हो गया। और एक बहुत खास बात, पुराने जमाने के घरों में यहाँ की दीवारें दिखाता हूँ, इधर आओ। ये देखो भाई, इतनी चौड़ी दीवार है, कम से कम ये कितने फीट चौड़ी होगी बाबा?
1: डेढ़ फीट
0: चौड़ी, और वो भी प्योर मिट्टी की। तो बाबा मेरे को बता, इतनी चौड़ी दीवार क्यों बनाते थे पहले?
1: वैसे चौड़ी होती थी कब के अपने राज में, टूटने को नहीं होना, ये नहीं होना करके चौड़ी रही।
2: बाबू वो छत से
3: जापान के घर क्या सच में डोरेमोन स्टाइल में होते हैं? तो चलिए,
4: अगले 5 मिनट के अंदर आप जितने 100 किलो के बंदे ढूंढोगे, हर बंदे पर मैं आपको दूंगा 500 रुपए। आपके पास 5 मिनट होंगे, 5 मिनट में आपको 100 किलो के बंदे ढूंढने हैं। एक बंदा ढूंढने पर मैं आपको दूंगा 500 रुपए। 5 मिनट में एक ढूंढो, दो ढूंढो, तीन ढूंढो, तीन ढूंढे तो 1500 करोगे चैलेंज। स्टार्ट, टाइम हो चुका है भाई साहब आपका शुरू।
5: चल किंतु
4: ढूंढ ले भाई।
6: भाई साहब की हेल्प करवाने के लिए एक भाई और आगे।
4: भाई चालू नहीं खड़े होते, अपना वजन दिखा देगा, चालू करने की जरूरी नहीं।
6: भाई साहब घुस गया पहली दुकान में।
4: लो, ओके ओके, ओ 103 किलो। ये क्या बात है, पहला बंदा मिल गया, अभी 4 मिनट और आपके पास।
6: दुनिया को इतना जो मोटो आदमी देख, जो 150-200 किलो को है, यो कंडो बंद हो जानो चाहिए। वो रे ताऊ पाओगे मोटो सेठ देख जो बैठो रहा है। अंकल जी वजन कितना था? बता दे अंकल जल्दी।
7: मेरे 62-63 किलो था भाई।
6: 100 किलो को चाहिए।
4: अरे यार 500 थोड़ी हजार तो लेके जा, कम से कम
6: ताजा मोटो टक्कर गयो भाई साहब। एक मिनट एक काम है, थोड़ा वेट करना सिर्फ, ऊपर खड़े होना है। भाई कुछ को नहीं, चैलेंज दे रखे, चैलेंज कम्प्लीट करना बस, सिर्फ वजन ही करवाना यार, वीडियो बना यार, चैलेंज दे रखे भाई। आ जाए यार दोस्त, ओ जय यार भाई, एक मिनट रिक्वेस्ट, 56 सेकंड रह रही है, एक मिनट हो जय यार भाई। चप्पल खोल, चप्पल ले गई चर्चे से खोल कि मैं कौन करना, खड़े हो जाए भाई, चैलेंज है बस, कंप्लीट हो जाए हमारा, रिक्वेस्ट है भाई, चर्चे प्लीज। 40 सेकंड रह गया यार भाई।
4: कितना है भाई?
6: 100। हाँ तो टाइम, 100 है पूरो
8: भाई, एक
4: सेकंड उठा ले अभी। 15 सेकंड और है भाई, कोई और है क्या?
6: 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड है तेरे पास। टाइम आपका हो चुका है पूरा, देख ले भाई।
4: ओके,
6: हो गया भाई टाइम कंप्लीट। आपने ढूंढे भाई साहब 2 बंदे, तो आप जीत गए कितने?
4: 1000 रुपए।
6: ये पकड़ भाई, 1000 रुपए
4: आपके हुए।
6: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले 5 मिनट के अंदर

0: 150 की दो टी शर्ट पहन के फुल हवाबाजी करके हम चले गए सैंडविच मसाज करवाने के लिए। फिर हम दोनों ने हिलाए अपने पैर, मस्तानी ने लगा दिया अपना पूरा ग्रैंड जोर, मैंने भी मार दिया दो सेट और फिर पहुंच गए शीशा के सामने इतना ने।
1: तो दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि इसमें 200,000 शेयर कंप्लीट हो जाते हैं तो अंकल को मैं फिर से राशन दिलाऊंगा। तो आप लोगों ने 2 घंटे के अंदर ही 200,000 शेयर कंप्लीट करवा दिए। अंकल आपके वीडियो में लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया है और लोगों ने बोला भी है कि अंकल को फिर से राशन दिलाओ, तो चलिए आपको फिर से राशन दिलाते हैं।
2: ठीक है बाबा,
1: तो चलिए अंकल को मैं फिर से राशन दिलाता हूँ।
3: अंकल को मैं अगले बार 1 मिनट का टाइम दिया था, आज मैं दे रहा हूँ अंकल आपको 3 मिनट का टाइम। ठीक है
2: बाबा,
3: स्टार्ट।

0: अंकल स्टॉप, अब आपका टाइम खत्म होता है, ठीक है?
1: ठीक है बाबा।
0: इस वीडियो से मेरे 5 लाख शेयर कंप्लीट हो जाते हैं, तो अंकल को मैं ऊपर से नीचे तक पूरा ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो आप लोग अगर अंकल का ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर देना।
1: शेयर कर दिए बाबा।
0: तो चलिए देखते हैं इसका बिल कितना होता है। कितना बिल हो गया अंकल?
2: 8767।
0: तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें
3: चारों धाम मग चरणों में मेरी माँ से दू।
4: आपको अपने पापा को कॉल करना है और 1000 रुपए मंगवाने हैं। ये सिर्फ आपको 3 मिनट में करना है।
5: 3 मिनट में?
4: हाँ।
5: फोन में बैटरी तो 3 ही रह रही है।
4: किसी और का ले सकते हो फोन तो?
5: अबे पापा ठाओ कौन का?
4: तो वो मेरी गलती थोड़ी है।
6: अरे भाई क्या बताऊँ मैं।
5: हेलो पापा जी, नमस्ते।
7: नमस्ते।
5: हाँ पापा जी, किन्ना हो?
7: मैं ड्यूटी पे।
5: अच्छा, मैं कहूँ थी एक बार 1000 रुपए चाहिए थे, दियो। मेरे नंबर पे भेज दियो, गलत ना भेज दियो, जल्दी से भेजियो, एक बार जल्दी से भेज दियो, जरूरत थी।
8: कुछ तरीका है भीख मांगने का?
5: ये भी भेजियो, मेरे पापा का फोन भी हमारा कर कई बार।
4: 2 मिनट और हैं, अभी तो बच सकता हूँ मैं। अगर फोन बंद हो गया तो भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रूफ चाहिए हमें।
5: ये क्या बात हुई भैया?
4: ऐसा ही होता है यार,
9: हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
4: 1 मिनट खत्म हो चुका है, पैसे नहीं आए हैं।
5: भेज दे पापा, जल्दी करो।
4: बच गए भाई, बच गए। मेरे को अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि 1000 नहीं लगेंगे।
5: बीच में फोन कर दिया करे पापा का, बैक मार दे।
4: आधा टाइम ऑफिशियली खत्म।
5: दिखा।
4: ना पापा ने मन्ना नहीं। 1 मिनट 20 सेकंड और हैं आपके पास। ये बच गए भाई 1000। दिखाओ दिखाओ। ओके, ये आ चुके हैं भाई 1000 रुपए। ये पकड़ो आपके 1000 रुपए।
5: थैंक यू।
4: आपको अपने पापा को कॉल करना है और 1000।
5: भाव कितने रुपए जुड़ी?
10: 200 रुपए जुड़ी
11: भाव। लेकिन
10: अबे चुप रे साले,
5: डिस्काउंट लगा दो यार, आपकी भाभी लगती हूँ मैं।
10: वो रिश्ते नाते सब मैं वो घर में देखता हूँ, यहाँ कुछ रिश्तेदारी रुश्तेदारी भाभी वो भी नहीं चलता यहाँ।
5: ठीक है घर पे देखना।
10: भाभी 400 रुपए यार। साले तू भर देगा अब मेरे को 400 रुपए?
11: मैं क्या के लिए भर दूंगा?
10: कैसे नहीं भर देगा तू?
11: तुम देखते बैठो,
10: मैं देखते बैठू? साले घर जाके बढ़िया रोटी के साथ गरम गरम मशरूम खाएगा। तू भर दे 400 रुपए, नहीं तो काटता हूँ तेरी 2 दिन की रोजी। साला तुम्हारी रिश्तेदारी देखते बैठूंगा तो मैं तो ऐसे कंगाल छूंगा। साला बिक भी नहीं रही है दुकान। हेलो भैया।

0: इस तरबूज को किसी ने अपने सर में मार के फोड़ दिया, उसको मैं दूंगा पूरे 1500 रुपए। तो अभी देख रहा हूँ भाई कौन फोड़ेगा इसको सर में मार के।
1: हेलो सर, सर वो हेलीकॉप्टर नहीं आया सर, मैंने 5 करोड़ यहाँ कैश रखे हुए हैं, कोई सुना तो नहीं रहा।
2: तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?
0: इसको सर में मार के फोड़ना है 1000 रुपए, सॉरी 1500 रुपए।
3: खोपड़ी फूट गई फिर
0: हम इधर से निकल जाएंगे पतली गली से। इसको सर में मार के फोड़ो 1500 रुपए। कुछ हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
4: ऐसे?
0: हाँ ऐसे फोड़ रहे हो?
4: फोड़ दिया।
0: अरे भाई दिमाग आ लगे हो ना, तो मन्नक निका गो ठीक से। अरे हाँ हाँ ठीक है। दो ती...
5: ऐसा क्यों होता है बार बार।
0: बना लो कंटेंट।
4: बहुत दिन हो तेरी वीडियो देखा, आज फंसे सही तो
6: पिट्टी पिट्टी कर दूंगी।
0: इस तरबूज को
7: आज की शुरुआत हो रही है फैक्ट्री से। ये देखो चालू हो गई है गाइस हमारी फैक्ट्री। गुड। 3 घंटे की मेहनत, 5 घंटे की और कल का एक दिन। तो यहाँ पे मंडाई है हमारी कड़ा और वहाँ पे आती है धूप, इसलिए मेरा भाई इधर भीड़ा है। 4 घंटे पकाने के बाद फाइनली तैयार हो गया है। अब इसको यहाँ निकालेंगे और फिर बनाएंगे इसकी बट्टी। ये देखो
4: अब हाथ पे आ जाएगा। दूर ले दूर ले दूर ले।
8: मेरी बहन अब कर रही है सफाई।
7: मेरे चाचा जी पी रहे हैं चाय, तो सोची उनकी मदद कर दूं। पता करना आता है मेरे को तो। तो अभी हमारे चाचा जी गांव आ रहे हैं और उनके साथ और आ रहे हैं दो, मतलब हमारी बुआ लोग भी आ रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। ओए पीछे माय ड्राइवर हूँ सीट पे। मैं
4: पीछे बैठ चुपचाप।
7: महंगा महंगा
9: आज मैं देख रहा हूँ कि कोई खूबसूरत लड़की किसी
4: देखो बोल रही गई। तो आप देख सकते हैं कि जो टंकी है उसके अंदर से भी पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी और बने रहते हैं और जो प्रेशर है, जो लीकिंग का प्रेशर है, उसे फुल तेज होने देते हैं और देखते हैं कि इतने प्रेशर के अंदर भी हमारी जो फ्लेक्स टेप है ये काम करती है या फिर नहीं। थोड़ा और भरने देते हैं क्योंकि हमने पकड़ रखा है। ठीक है हटा दे हाथ लगाते हैं। ठीक है गाइस आप देख सकते हैं बनता ही है।
10: क्या सर ने लाइक कर दिया, बस एक जने नहीं किया वो रहा सामने।
4: इसने नहीं किया भाई ने। भाई करना लाइक। भाई बच्चन बोल भाई को लाइक
10: करते यार। भाई
4: करते यार इतने बोल दे। अब तो करते यार
10: कर दिया भाई। निकलो
4: टाइम के लिए बोल दे। एक तो बंदे ने
11: सब्सक्राइब करो जिसने नहीं करा है।
4: कोई नहीं प्यार से बोल लो बुरा मान जाते। आप प्यार सब्सक्राइब कीजिए प्यार। टॉपिक बड़ा है ना तो बहुत बड़ा हो गया। देखो
12: लागे दीदी मैं बर्तन किसने लग रहा हूँ और आज से ना।
13: हाँ जी क्या कर बोलो। कौन सा फोन चला रहे तू भाई साहब? कौन सा ये
14: 15 प्लस
13: रिक्शा चलाता है और 15 प्लस चलाता है?
14: है
13: क्या करना बता।
14: फॉलो कर रखा गिफ्ट आप देते हो मैं बहुत दिन
13: से। मैं देख तो लू एक बार फॉलो कब से कर रखा है
14: देख लो आप।
13: एक बार आगे कर ले पीछे लाइट होगी। जनवरी 2024 से
14: अभी फोन खरीदा ही
13: है।
14: अभी फोन खरीदा हूँ।
13: कैश पे खरीदा ई एम आई पे?
14: ई एम आई पे खरीदा हूँ।
13: अच्छा तो रिश्वत लाके ई एम आई भर लेते हो?
15: क्या बात है मेरे भाई।
13: ये देख लो भाई की पर्सनैलिटी भी असली है ना ये आईफोन। आ गया एक काम करो फटाफट दुकान पे पहुंचो मैं फोन कर रहा हूँ तुम्हें घड़ी और बैग देगा जाओ। हाँ जी
16: एक बहन ने कमेंट किया कि 20 केजी आलू उबाल कर रिस्क लो, तो मैंने आज दो बार में 20 केजी आलू उबाला है। 20 केजी आलू की बिक्री के बाद आज की दिहाड़ी सुन के तो आप हैरान ही हो जाओगे। तो आज सबसे पहले घर के बाहर ही 20 रुपए की बिक्री हो जाती है, फिर उसके बाद 10 रुपए की बिक्री होती है, फिर उसके बाद
0: इस नीले ड्रम में आज कोई लड़की 10 गोलगप्पे खा गई तो उसको मैं दूंगा पूरे 2000 रुपए। तो अब देखते हैं भाई इसमें कौन गोलगप्पे खाएगी। आज नीले ड्रम के अंदर गोलगप्पे खाने सिर्फ 2000 रुपए।
17: बंदा तो मार के डाल सकते हैं उसमें।
0: इसके अंदर आपको सिर्फ 10 गोलगप्पे खाने हैं 2000 रुपए। खा लोगे?
17: हाँ खा लूंगी।
0: एक्शन। ये पहला गोलगप्पा। ये बात कैसा लग रहा है गोलगप्पे?
17: गोलगप्पे किसे पसंद नहीं आते।
0: नहीं नीले ड्रम में कैसे लग रहे हैं? आप भी खाओगे आंटी?
18: चुप रहो चुप रहो चुप रहो।
0: ये हो गए 3। ये 600 रुपए आपके हो चुके हैं।
19: भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई
0: आपको पता है क्या कौन सा ड्रम है?
20: टुकड़े करके डाल लेकर दूध लेगा?
0: नहीं वो नहीं है। ये चीनी डाल रखी थी हमने घर पे।
3: भाई चार गोलगप्पे हो गए।
1: हाँ 800 हो गए। तो आंटी मैं पैसे ना दूं तो
3: खैर तो ना कुटांगे यहाँ पे घेर कहना है।
6: किसकी बात कर रहे हैं
1: ये कौन है आपकी वैसे?
3: इसकी मम्मी हो।
1: सॉरी आंटी जी मैं तो मजाक कर रहा था।
6: अब आए ना लाइन पे।
1: दो फालतू खाओगे तो नीला ड्रम भी आपका, फिर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
6: क्या?
1: अरे इस्तेमाल मतलब चीनी डालने के लिए बोला। और ये भाई 9 नंबर कम्प्लीट हो चुका है और पानी भी पीना पड़ेगा।
3: पानी की कोई बात नहीं हो रही।
20: अरे गिलास में मटके का।
1: ये आंटी ने पेट देगी ज्यादा बोला तो। 10 कम्प्लीट हो चुके हैं। देखो आंटी मेरे हाथ कहाँ पर है प्लीज। ये नीला ड्रम और ये 2000 रुपए आपके। इस नीले ड्रम में आज कोई लड़की 10 गोलगप्पे।
21: शिरादा शिरादा।

0: अगर किसी के टिफिन में सूखी रोटी हो तो क्या लोग उसे खाना ऑफर करेंगे? स्लिट्स को ट्राई करते हैं।
1: भैया यहाँ बैठ के खा सकते हैं, खा लीजिए।

0: के पीछे।
1: इस गुल्लक में ये 500 रुपए डालने वाला हूँ मैं। अभी मैं इसको 200 रुपए में बेचूंगा, देखते हैं कोई लेगा या नहीं। इस गुल्लक को है ना मैं 200 रुपए में बेच रहा हूँ, लोगे क्या? आप लोगे भैया? 200 रुपए देने पड़ेंगे।
2: 50 रुपए।
1: ठीक है, वहाँ पीछे दुकान है, ले आना।
2: 100 ले लिए यार,
1: मोल भाव करने वाला काम ही नहीं अपना। 200 देने तो बात करो,
3: मैं झुकेगा नहीं।
1: ये गुल्लक मैं 200 रुपए में बेच रहा हूँ,
4: तो उससे मेरा क्या फायदा?
1: ये गुल्लक बेच रहा हूँ मैं मात्र 200 रुपए में, लोगे क्या?
5: 200 में?
1: हाँ
5: ले
1: लोगे? चलो भाई साहब 200 रुपए दो फटाफट। थैंक यू, ये आपका हुआ, आप घर ले जा सकते हो। दिख गया अपना तो माल, ऐसे प्रॉफिट किया जाता है। मैंने इसको 40 रुपए में लिया और पब्लिक को बेवकूफ बना के 200 रुपए में बेच दिया।
6: तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा।
5: देखो ये बढ़ गया,
1: देख सकते हो आप, इसमें कुछ हो भी सकता है। ओहो, अरे भाई साहब,
7: इतनी खुशी मुझे।
1: इस गुल्लक में
8: बिजली के बिल से परेशान होकर मैं लगा रहा हूँ सोलर पैनल। साला जब से एसी लगाया हूँ 5,000-5,000 रुपए बिल आ रहा है, 5,000-5,000 रुपए बिल आ रहा है।
5: भाई ऐसा करना, वो एसी निकाल के मेरे को दे दे, तू भी खुश मैं भी खुश।
8: तू जा बे साले उधर का काम देख, एक तो मेरा पहले ही दिमाग खराब है और तुम्हारी डिंग डिंग अलग रहती है। धीरे से चल नहीं तो घसर के मरेंगे। और ये लग गया है अपना सोलर पैनल।
9: भाई ये सोलर पैनल बिना वायर के इस खंभे से बिजली खींचता है क्या?
8: अबे अकली के अजरान, सूर्य से डायरेक्ट बिजली बनाता है वो। साले 12वीं तक भी पढ़ लेता ना तो ये सवाल नहीं पूछता आज तू मेरे को। इसकी टाइम टाइम पे सफाई करते रहना पड़ेगा, तब बच्ची अच्छे से बिजली बनाएगा। संतोष तू भी अपने घर में एक लगवा लेना पे सोलर।
5: बहु लगाना तो है पर लगाने वाला नहीं मिल रहा है। अच्छा
8: ये है ना अपने पंकज भैया, इनसे लगवा ले।
5: काम अच्छा है क्या इनका?
8: तो साले मैं क्या झोला झंडी मिस्त्री को बुलाऊंगा क्या? ये भैया को दिल्ली से सोलर के बेस्ट काम के लिए अवार्ड मिला है, 10 साल का अनुभव है कि नहीं भैया?
10: हाँ भैया।
5: भैया मेरे घर पे भी लगा देना अगले साल।
10: अगले साल नहीं भैया, आप इसी साल लगाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 78,000 की सब्सिडी बंद होने वाली है।
8: लगा ले रहे संतोष इसी साल, नहीं तो साले होएगा बर्बाद अगले साल के चक्कर में।
5: हाँ भाव तुमने सही बोला, 78,000 रुपए बचेंगे मेरे।
10: ठीक है भैया, फिर अभी साइड फाइन कर लेते।
8: मौसम बढ़िया हो रहा है यार। प्रभात मैं क्या बोलता हूँ, तू भी अपने घर में एक सोलर पैनल लगा लेना बे।
9: भाव मेरे घर पर बिल नहीं आता।
8: क्यों नहीं आता बे?
9: चोरी की लाइन चलाता हूँ।
8: अबे साले जिस दिन पकड़ा जाएगा ना, धारा 135 के तहत जुर्माना होएगा और 2 साल की जेल भी हो सकती है। लगा ले रहे सोलर, अभी भी मौका है। गाइस अगर आपको भी सोलर लगाना है तो ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर कंपनी बालाघाट से लगवा लो, जिसके ओनर है हमारे पंकज रणगिरे भैया। कॉन्टेक्ट डिटेल मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ। अभी
1: इस बोतल को कोई पूरा पी गया तो उसको मैं देने वाला हूँ 1,000 रुपए। भाई साहब इस कोल्ड ड्रिंक को 5 मिनट में पीना है 1,000 रुपए। ये भाई बोल रहा है मैं पी जाऊंगा पूरी की पूरी 5 मिनट में।
8: पक्की बात है?
11: पक्की बात है भाई।
1: 3, 2, 1 स्टार्ट। टाइम हो चुका है भाई शुरू। 2 मिनट हो गए,
11: 13 सेकंड,
1: 25 सेकंड। ले भाई इतनी खत्म हो गई है, और 50 सेकंड।
11: अभी 1 मिनट हो ही को नहीं है, अब हो ही है
1: भाई। लग रहा है मेरे को 1,000 लग गए, जिस हिसाब से भाई चल रहा है। भाई उल्टी मारा ना तो एडिटर तक बचा के मारे का, एक ही पेंट है बेचारे का।
12: कौन बोला रे? तुम क्या रहे हो? मैंने पूछा कौन बोला?
1: 1 मिनट 23 सेकंड हुआ भाई, कहाँ जाना है क्या कहीं? इतना जल्दी खत्म कर दिया, 1.5 मिनट हुआ। डकार तो ले ले, थोड़ा सा हालत टाइट होने लगी है भाई की। ना दबाओ ना, बाहर आ जाओ। 2 मिनट हो चुके हैं भाई, 3 मिनट और बाकी है, और लगभग आधी से ज्यादा खत्म हो गई है।
11: अरे बाप रे, भाई मन्ने बता दे।
13: अरे पीजेगा टेंशन ना ले।
1: मेरे तो 1,000 लग गए, आधा टाइम खत्म हो चुका है भाई। थोड़ी हेल्प करूं भाई, एक और मंगवा दूं। 4 मिनट हो चुके हैं भाई, इतना माहौल बन चुका है अभी। भाई देखो माहौल कैसा बना हुआ है, कितने सारे लोग आए हुए हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2
14: जिया जाए ना जाए ना जाए ना।
1: इस बोतल को कोई पूरा पी गया तो

0: जय श्री सिलेंडर महाराज।
1: जय हो।
0: ये ले प्रसाद खा। और चाय बनेगी चूल्हे पे, सब्जी बनेगी चूल्हे पे, रोटी बनेगी चूल्हे पे,
2: गैस पे क्या बनेगा? तो फिर
0: कुछ नहीं बनेगा गैस पे। गैस रहेंगी सिर्फ दिखावे के लिए अपने घर में। अमीरी झलकना चाहिए पूरी, फुल सिलेंडर होना फुल।
2: हरसू सिलेंडर खत्म हो गया है, वो एक्स्ट्रा रखा है।
3: बद्दुआ तो नहीं दे सकती क्योंकि प्यार करती हूँ।

जानते हैं YouTube पर 1.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी हर्ष, संतोष और प्रभात की लाइफस्टाइल कैसी है? करोड़ों की कमाई होने के बाद भी ये तीनों दोस्त आज भी अपने मध्य प्रदेश के गांव में एकदम साधारण तरीके से रहते हैं। इनकी यही सादगी इन्हें सबसे अलग बनाती है। तो भाई, इनकी ये देसी जोड़ी आपको कैसी लगती है? कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब करो। क्या आप जानते हैं YouTube पर

0: हाउ तब ओवर टाइम कर देते।
1: हाउ क्या साला, तुम लोगों ने ओवर टाइम कर करके बंगले के बंगले खड़े कर दिए और मैं झोपड़ी का झोपड़ी में ही हूँ। मेरे को बताओ ना भाई, कहाँ पे ओवर टाइम करते थे, मैं भी आऊंगा रे भाई।
2: भाई इस काम में बहुत रिस्क है, तू रहने दे, तू घर देख बस मेरा।
1: चल दीका, तो कैसा सामान लगाया घर में, ओरिजिनल लगाया कि नहीं? अच्छा
2: पूरा ओरिजिनल है।
1: अभी ये क्या गिरी लगाया पे साला, यहाँ छेद दिख रहा है पूरा। वहाँ केप लगाना था ना, केप आती ना उसकी?
2: अरे तो भाव मैंने काम किया क्या, वो मिस्त्रियों ने नहीं लगाया तो मेरी गलती क्या?
1: साले पूरे झोला झंडी मिस्त्री बुलाया पे, ये ऐसा लगाते ये पूरा हिल रहा है यहाँ पे मेरे घर पे लगा, फेंकता साले को निकल के। ये कौन सा कलर है? ये
2: नट ब्राउन।
1: काई का नट ब्राउन ना नूडू ब्राउन बे साले लाल।

0: गाइस मैंने अभी एक स्टेप किया, सुबह का 7 बज रहा है और हम लोग निकल रहे हैं अभी शूट के लिए।
1: पूरी तैयारी हो गई है, सामान वगैरह भर दिए है।
0: चलो चलो चलो, पहुंच गए हैं लोकेशन पे। अभी चलेगा मेरा मेकअप वगैरह थोड़ा सा। ये इधर एक गांव है, गांव में शूट करेंगे बोल रहे भाई। यहाँ तो मेरे को कुछ लोकेशन दिख नहीं रही है।
1: ये देखो कहाँ कर रहे हो भैया शूट?
0: इधर से,
1: अच्छा इधर, ये देखो इधर देखो, ऐसा तो हमारा भी गांव है यार।
0: ये देखो ऐसा हो गया है, मेकअप पूरा गोरा गोरा लग रहा
1: हूँ। गाइस अभी चल रही है पूजा पाठ,
0: हो गई पूजा पाठ समाप्त, अब करेंगे शूट चालू। और गाइस मैं आपको हीरोइन दिखाता हूँ,
1: ये देखो इधर देखो, कल्पिता, इनका नाम है कल्पिता,
2: इनका नाम है हर्ष।
1: ये है ग्रुप डांस वाले जो पीछे में रहते हैं ना, बैकग्राउंड डांसर, ये इतने सारे लोग हैं।
3: हटो हटो हटो हटो हटो हटो हटो।
1: ये भी आया है आज के गाने में, ये देखा
0: हंस देख करके मेरे को सुला दिया है यहाँ पे ऊपर में। और अभी ड्रोन उड़ा रहे है, ड्रोन शूट है, अच्छा शॉट आएगा वैसे यार पीछे में, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत प्यारा है यहाँ पे। गाइस जब भी आप गाना देखोगे तो पहला सीन मेरा यही दिखेगा और पहला सोया वाला। गाइस मैंने अभी एक स्टेप किया, बड़ा मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलो
2: इसके सूट वाले ब्लॉग में मेरी एंट्री नहीं हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो गई फिर से मेरी एंट्री और अब ये देखो सीन सूट हो रहा है, बहुत प्यारा है ये। गलत कर दिया इसने,
0: सीन चेंज, कपड़े चेंज, जगह भी चेंज।
1: ये वाली जगह पे आ गए हैं अभी, यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे पेड़ है बस सीधे सीधे।
0: मेरे चेहरे पे 1 सेंटीमीटर की पुट्टी हो गई है, सुबह से बस मेकअप ही मेकअप हो रहा है।
2: सो गाइस चल रहे भी,
0: सुबह पोहा खाए थे और अभी 3 बजे हम लोग खा रहे हैं खाना फाइनली।
1: 4 बजे तक भूखा रखी इन आदमी ने और इन आदमी ने।
0: आ गए हम हमारे नई लोकेशन,
4: भाई बाथरूम का नल पानी नहीं फेंक रहा है।
5: आए, पानी नहीं फेंक रहा है?
4: हाँ
5: रुक भला, ऐसा कैसा पानी नहीं फेंक रहा है साला?
4: ये देख फेंकच नहीं रहा है।
5: अबे साले इसको ऊपर करना पड़ता है, कुछ टेक्नोलॉजी होती कि नहीं? पूरा बैल है तेरे को, शहर का कुछ नहीं मालूम, इसको ऊपर करके कर रहा है। धोल अभी क्या धुलता है तू? क्या सोच रहा है बे प्रभात?
4: अपने जैसे एंट्री लिए वो दरवाजा ऑटोमेटिक खुला कैसे?
5: अबे उसमें मोटर और सेंसर लगी है, जैसे कोई आदमी उसके सामने आता है वो खुल जाता है।
4: अच्छा
5: क्या आदमी है बे साले, कुछ नहीं मालूम तेरे को।
6: आज मौसम
7: नए नंबर से फोन।
5: हेलो
4: हेलो भाऊ,
5: अबे साली ये कौन से नए नंबर से फोन लगाया तूने?
4: भाऊ अपने टॉयलेट में ना एक फोन है, उससे फोन करके देखा तेरे को।
5: अबे साली तू पागल है क्या? रख पूरा फोन लगा रहा है मेरे को,
8: खत्म। ये है एक नॉर्मल सी पत्ती और हम इसकी एंडिंग में इंक को इस प्रकार लगा दे तो ये बोट की तरह चलती है।
9: वो एक माचिस लेनी है और उसमें से खोखे को निकाल के फेंक देना है, फिर जो बच्चा है उसके नीचे हिस्से में स्याही लगा के और पानी में तैराओ, फिर देखो एक नाव की तरह चलता है। ये है एक नॉर्मल सी पत्ती।
10: ये लग गया।
5: कौन सा फोन ले लो?
10: 17 प्रो मैक्स ले रहा हूँ भैया।
5: 17 प्रो मैक्स?
10: हाँ जी।

Okay.

0: आज मंदिर आ गए।
1: चलो पहुंच गए मंदिर। प्रभात तू जा फटाक से प्रसाद लेके आ।
2: अजय एक प्रसाद पैकेट देना।
3: 50 वाला दो कि 100 वाला?
2: 20 वाला नहीं है,
3: इसमें तो नारियली नहीं आता भैया।
2: एक काम करो 50 वाला ही दो। ये ले भाव प्रसाद।
1: कुछ घपला तो नहीं किया बे?
2: भाव पूजा पाठ के मामले में घपला नहीं करता कभी मैं।
1: ठीक है चलो फिर। अबे हट बे, दुकानदार ने तिरंजीच नहीं दिया।
2: वो पुजारी ने निकाल लिया होगा।
1: हाँ क्या संतोष, ले इसको छील तो।
4: हनुमान के नाम से दे दो बाबा थोड़ा सा।
1: ये लो भैया। कितना कमा लेते हो भैया दिन का?
4: ये कुछ 2-3 हजार रुपए कमा लेता हूँ।
1: बढ़िया काम है यार तुम्हारा तो। चलो बे। अबे संतोष मैं क्या बोलता हूँ। अबे क्या कर रहे हो तुम वहाँ पर बे?
2: भाव भीख मांग रहे।
5: तेरे पास काम करना पूछा तो नहीं है? 150 रुपए में गांड बड़े तक की काम लेता है तू?
2: तेरे पास काम करने से अच्छा तो हम भीख मांग के 2-3 हजार रुपए कमा लेंगे।
1: मांगो सालो भीख।
0: आज मंदिर आ गए।
6: हाथ पकड़कर उसका उसे सौभाग्य दिलाने लाया हूँ। महाकाल के दिए उस बेशकीमती तोहफे को आज महाकाल से मिलाने लाया।
7: जयकाल महाकाल विकराल शंभो
8: हर हर महादेव।
6: हाथ पक
1: इन लोगों को चढ़ना है वहाँ पे, और मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों लोग ऊपर नहीं जा सकते बिना सीढ़ी से। तो मैंने लगा लिया इनके साथ 1000 रुपए की शर्त। तो अभी देखते हैं कि ये क्या सही में चढ़ पाते हैं। भैया तुमको क्या लगता है,
9: चढ़ जाएंगे ना?
1: चढ़ोगे? पहले बताओ तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी क्या है तुम्हारी? स्ट्रेटजी क्या है?
2: वो क्या होता
9: है? मतलब हो जाएगा काई को, वही जाना को बताएंगे हम। हां चल ले, पहले छुट्टी चढ़े।
1: नहीं चलो लो रेडी। नहीं चढ़ सकते ना ये। हाँ कुछ नहीं, वैसा नहीं, बस चढ़ना वही चढ़ना। तो एक पहले चढ़ो ना, उसके बाद हटाओ, फिर कोई एक चढ़ो पहले।
9: अरे कुछ नहीं होता ना, छोटे चल रहे। वो भी सामने आना भाई, छोटे सामने आना भाई, सामने आना भाई। आप उसको मैं जैसे उठाने लग रहा हूँ ना भाई। बात मिला कि चढ़ सकते हैं?
1: हाँ नहीं चढ़ सकता ये। गिरे गिरोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी भैया।
9: ठीक है
1: गया गया गया।
9: गुड
1: चलो ठीक है। एक एक दो लोग आराम से चढ़ सकते हैं, मेरे को मालूम है तीसरा नहीं चढ़ सकता।
2: चढ़ना था अभी देवकांत।
1: सुमित हारूंगा कि जीतूंगा मैं?
10: मेरे भाई तो लगे।
1: किसकी तरफ से?
10: उनकी तरफ से।
1: तो गाइस मैं होने वाला हूँ बर्बाद। हाँ बिना सीढ़ी से।
9: 300 वाले।
1: चलो ये तो चढ़ जाएगा आसानी से, क्योंकि ऊपर भी एक है नीचे भी एक है। गिरा तो खत्म है, हड्डी वड्डी हड्डी पसली टूटेगी पूरी।
9: तुम मेरे हाथ पास।
1: अब सबसे भारी काम बच गया, ये आदमी, ये बहुत भारी भी है और अभी सबसे लास्ट पे जाने वाला है।
2: टेंशन मत लो,
1: टेंशन बहुत है ना, मैं अभी देख तू। अब मजा आएगा। हाँ
9: अभी क्या बना
1: कर दिया? गजरा गजरा 1000 रुपए अंदर है, मैं बता रहा हूँ ये नहीं चढ़ सकता आदमी। इसका वजन कितना पता है? 70 किलो वजन है इस आदमी का। पता चल रहा है वो भी नीचे आ रहा है, आ जाएगा। साला हट बे।
11: आए ना भक्ति।
2: तो भैया बताओ कैसा लग रहा है?
1: अच्छा तो नहीं लग रहा है
2: बुरा कुछ।
11: तो गाइस आज हम कर रहे हैं पानी पूरी चैलेंज, और सबसे पहले चालू करेंगे हमारे चाचा जी। टाइमर टाइमर लगा।
12: ए सीरी स्टार्ट टाइमर। 1 मिनट काउंटिंग डाउन स्टार्ट।
11: 3 2 1
9: मुंह में जाए।
11: हार गए गाइस। मोहित भैया ने

0: आज है अपने घर में तुलसी विवाह, तो तुलसी का मंडप बनाने के लिए अपने को ले जाना है अपने खेत से गन्ने। चलो बे गन्ने लाने चलो भला जल्दी। देखो बे ये वाला खेत अपना है और ये पड़ोसियों का है, चलो ले जाओ गन्ने काटो। अबे उधर का जा रहे हो, इधर काटो।
1: लेकिन दूसरे का खेत है।
0: अबे तो साले क्या अपना घाटा करेंगे क्या? ये वाले खेत काटो, काटो जल्दी। अबे रसवंती गन्ने काटो, अपने को कल खाने के भी काम आएंगे। हाँ ये सही, रसवंती गन्ना काटा यार तुझे।
2: मेरे खेत के गन्ने क्यों काट रहे हो?
0: ये तुम्हारा खेत है,
2: नहीं तो क्या तेरा है?
0: बे प्रभात इधर आ बे तू। साले तेरे को बोला था ना अपने खेत से गन्ने काट करके, ये वाले खेत से काटो बे, ये वाले खेत से काटो। इनको बोला था यार कि ये वाले खेत से गन्ने काटो करके, साले ये वाले खेत में घुस गए।
2: कोई बात नहीं यार, आगे से ध्यान रखना।
0: अबे हो गया बस पांच ही गन्ने लगते है। अबे तो छील तो सही बे उनको पहले।
3: अपनी तो सीवी में हॉबी ही किसान है।
0: ये रही अपनी तुलसी, यहाँ पे बनाना है अपने को मंडप। चलो लो इधर से बांध, पहले एक साइड से बांध दो यहाँ पे अच्छे से। चलो खड़ा करो यहाँ पे अभी।
3: गांव से ही भारतीय संस्कृति बरकरार है यहाँ।
0: ये बन गया अपना मंडप, अभी चलो जाओ भाई नए कपड़े पहन के आओ, पूजा पाठ रात में करेंगे। चलो जाओ जल्दी। कितना टाइम लगाते हो मैं आने के लिए? और तेरे को बोला था ना नए कपड़े पहन के आने को।
4: मेरे पास सबसे नए कपड़े ये चाहिए।
0: सबसे नए कपड़े तेरे ये हैं। चलो ले पूजा करो।
1: भाऊ ये तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है?
0: तुलसी विवाह भगवान विष्णु सालिग्राम

0: प्रभात के यहाँ गृह प्रवेश और मैंने खरीदी उसके लिए एक गिफ्ट। मैंने एक सेट लेके आई और ये दो भाई है, तो मैंने क्या की दो को दो जगह इसीलिए पैक की थी ताकि दोनों को दे पाऊ। इसको बोले दिमाग, पैसे भी बचे मेरे। मैंने जो प्रभात को गिफ्ट दी ना वो यहाँ पे रख रहा है।
1: फाइनली गाइस वर्षा का दिया गिफ्ट ही देखो,
0: चल रख।
1: थैंक यू सो मच वर्षा,
0: वेलकम वेलकम, चल रख। एक ऐसे एक में की तरफ, हाँ वैसा
1: ठीक है,
0: बहुत सही। आज है प्रभात,
2: ये ले वर्षा कपड़े धो जल्दी, मेरे को शाम को शादी में जाना है।
0: मेरे को क्या नौकरानी समझ के रखा है जो तेरे कपड़े धो?
3: लेकिन एक सेकंड
0: बहू
4: जी, मम्मी जी
0: क्या कर रही है?
4: मम्मी जी वो कपड़े धो रही थी तो सर्फ डाल रही हूँ।
0: अच्छा, सर्फ डाल के हमारे लिए खाना बना दे।
4: हैं?
0: है क्या, एक बार में सुनाई नहीं देता?
4: नहीं नहीं मम्मी जी, सुनाई तो दे गया, लेकिन मैं ये पूछ रही थी आप खा लोगे?
0: क्यों, तुम्हारे घर नहीं खाते?
4: नहीं मम्मी जी, हमारे तो नहीं खाते।
0: तुम्हारे घर नहीं खाते होगे, लेकिन हम तो खाते हैं। ये सब छोड़ के पहले हमारे लिए खाना बना।
4: जी मम्मी जी, अभी आई।
3: ये क्या है? अरे बाबा, अब देख तू, अब देख तू, और अभी तो रुको, आईमैक सभी बाकी।
0: आ, जब खुशबू इतनी बढ़िया है तो खाने में टेस्टी कितना लगता होगा।
4: लो मम्मी जी खाना।
5: रुको जरा, सबर करो।
6: अब रुकी गए हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख दो।
2: दीदी 500 रुपए उधार चाहिए थे, मिल जाएंगे क्या? कुछ काम था।
0: हाँ मिल तो जाएंगे, लेकिन मेरे को काम पड़ेगा तो वापस देना पड़ेगा।
2: क्यों, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है?
0: तेरे पे रत्ती भर विश्वास नहीं है मेरे को। तेरी शकल देख के लग तो नहीं रहा है तू दे देगा।
2: दीदी तू मेरे को एक कॉल कर देना, तेरे पैसे तुरंत वापस।
0: ठीक है ना, लेकिन जब भी काम पड़ेगा वापस देना।
2: हाँ दीदी बोलना।
0: मैंने जो तेरे को 500 रुपए दी ना वो वापस कर दे, मेरा मेकअप का सामान आया है।
2: धन्यवाद दीदी, अगर तू 500 रुपए नहीं देती ना मेरा काम रुक जाता।
0: धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तू भी मेरी कभी मदद कर देना।
3: हाँ सारी बात।

0: साला पूरी बनियार आ गई, लेकिन अभी तक के मेरे चोर आदमी नहीं पहुंचे खेत। अबे तुम्हारे लिए आरती लेके आऊंगा तब आऊंगे क्या खेत? साला पूरी बनियार पहुंच गई है।
1: भाव आरती लाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले बोलना था ना आज बनियार आने वाली करके।
2: कल बता देता ना, मस्त दाढ़ी शेविंग करके आता। भाव लग रहे नाम तो नहीं रहा, आज तो एक ना एक सेट करके ही जाऊंगा मैं।
0: सालो तुम लोग यहाँ बनियार सेट करने आए हो क्या? सालो बनियार सेट करने आए हो यहाँ पे? जाओ भाई कपड़े बदल के आओ। खेत में नए कपड़े?
1: साला जलता है ये भाव अपने से।
2: ये भाव के कारण ना एक जन्म में अपनी सिटिंग होने से रही।
0: अब लग रहे हो ना जैसा लगना चाहिए। साले नए कपड़े पहन के आएंगे, ये बंदी में पूरी पेंडिया पकड़ना है, वो बंदी से पेंडी लेके आओ और यहाँ फेंको पूरी एक। जाओ भाई जल्दी।
1: भाव हो गई पेंडिया फेंक के पूरी?
0: हो गई। अब ये जितना भी केजबिल ने काटा है ना धूरा, वो पूरा इधर बंदी में फेंकना है अपने को। चलो लो काम चालू करो।
2: हो गया भाव धूरा साफ करके?
0: आराम करते हो गया तो एक दो घंटा?
2: हाँ बस एक घंटा।
0: अबे काहे का आराम बे, सालो एक घमेले पकड़ो और खात मारो बे। साले आराम करेंगे, आराम करने आते हो क्या खेत में कि बनियार को देखने आते हो? ये वाली बंदी को मारो पहले।
1: भाव हो गया खात मार के पूरा?
0: हो गया क्या? अब वो जो अपनी बनियार इन परा लगा रही ना, तो वहां पर जाओ और वो जापानी की रस्सी पकड़ो। मैं खाना खा के आता हूँ, बहुत ताकत से भूख लगी है मेरे को।
3: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
0: हो गया खाना।
4: अभी मैं गाली नहीं दे सकता।
5: नहीं गाली नहीं देना।
6: क्या बोलूं मैं इस पे?
0: साले एक नंबर के लौंडिया बाज आदमी है मेरे तो।
1: खत्म।
0: साला पूरी
7: आपको इन दोनों ईंटों को हाथ ऊपर करके ऐसे पकड़े रखना है। जब तक आप पकड़े रखोगे, हर एक मिनट का मैं दूंगा आपको एक लीटर पेट्रोल इस पेट्रोल पंप से। लेकिन आपको 5 मिनट तक पकड़े रखना पड़ेगा, तभी पेट्रोल मिलेगा। लखटा वंटी ये टकुड़ी दा 47 वे टकुड़ी दा, आ जाओ सारे तेल डलवाने, चैलेंज करके ले जाओ पैसे। एक चैलेंज करोगे भाई साहब? रुके बिना कैसे बताऊंगा भाई साहब। एक चैलेंज करोगे हमारे साथ? इधर आओ जरा। ये भाई साहब आए हैं चैलेंज करने के लिए। इन दोनों ईंटों को आपको सिर्फ ऐसे पकड़े रखना है। 1 मिनट पकड़ने का 1 लीटर पेट्रोल है।
8: 5 मिनट का क्या है?
7: 5 मिनट का 500, 10 मिनट का 1000। स्टार्ट। टाइम हो चुका है आपका शुरू। और आज सीधे है ना आपके? हो गए 10 मिनट ना, सॉरी 10 सेकंड। 5 मिनट रख लोगे क्या?
8: रख लिया।
7: क्या करते हो आप वैसे?
8: इंजन मिस्त्री काम।
7: 1 मिनट 42 सेकंड हो गए हैं। वो भाई साहब बोल रहे हैं आधा घंटा तक नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करोगे?
9: मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है।
7: आधा घंटा का हो गया 3000 रुपए और ये आपके 5 मिनट हो चुके हैं। 5 लीटर तो आपका हो गया है। हाथ फिर से बेंड हो गया भाई साहब, हाथ सीधा रखो यार।
10: 7 मिनट कंप्लीट। मैं आज के बाद वीडियो बनाना बंद ना कर दूं।
7: भाई साहब चाय पानी कॉफी कुछ लोगे? आप नीचे रख देना, मैं पिला दूंगा आपको फ्री में।
11: राजा जी
7: 9 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। कोई नहीं भाई साहब, जितनी देर रखो, हम तो ऐसे मजाक करते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों में। आप जितने पैसे ले जाओ, हम बस आपको दिखाएंगे नहीं हम रो रहे हैं। 10 मिनट कंप्लीट। अब क्या लग रहा है भाई साहब?
8: अच्छा लग रहा है,
7: मेरा गिलास सूख रहा है, कोई पानी पिला दो यार। ये भाई साहब इतना तो स्कूटी में तेल भी नहीं आएगा, क्या करोगे?
8: वो देख लेंगे,
7: ट्रक बुलाओगे क्या आज? भाई साहब अगर आप ईंट नीचे रखो ना तो आपके हाथ में दर्द नहीं होगा, रख के देखो। 13 मिनट कंप्लीट। 1300 रुपए हो गए भाई। अरे ओ भाई एक जगह खड़े हो ले, फेरा ले को मेरे लिए।
12: कैसे महसूस हो रहा है भाई?
7: किसको?
12: आपको।
11: क्या था?
7: मैंने सोचा भाई क्यों पूछ रहे हैं, यहाँ बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 1500 रुपए भाई साहब बहुत होते हैं यार।
10: भाई भाई भाई
7: 1700 होने वाले हैं भाई, थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा यार, पैसे ऐसे थोड़ी होगा। 18 मिनट 1800 रुपए आपके हो चुके हैं और अभी हाथ सीधे ही रहे। अरे मैं तो जोश में आया था, वो 5 रुपए ईंट की और लगवा दिए, मांग के लाया था मैं उधर से।
13: क्या रे भीख मंगया?
7: तेल तो आपकी स्कूटी में है, आएगा भी नहीं भाई साहब इतना। ये पकड़ो भाई आपके 1800 रुपए। आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है ना लॉन्ग वाली, जल्दी से जाके देख लो फटाफट। आपको इन दोनों ईंट
14: भर मैं करूँ।
4: आराम से आराम से। देखो
5: बहुत जल्दी ये प्रभात का ब्रेकअप करवाना होगा। रात भर वो शांति से बात करता और दिन में सोता है।
13: हाय लुचकी ओए लुचकी मोर मैंने का दीवाना बनाए वो तोर झुमका।
14: भाई हर्ष, पुश तोड़ी की नई बाइक और पहले दिन ही ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हर्ष पुश तोड़े ने बालाघाट के शोरूम से अपने ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड H350 खरीद के वही लेके निकलते ही एक्साइटमेंट में उन्होंने पहले टैंक फुल करवाया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही बिना हेलमेट के राइड करना उनको काफी महंगा पड़ा। पहले दिन ही पुलिस ने उनका चालान काट दिया। मतलब नई बाइक लेकिन पहली मेमोरी चालान वाली बन गई। भाई कमेंट में बताओ कि आप हर्ष भाई की जगह होते तो क्या करते। भाई हर्ष पुश तोड़ी की
15: एक एक्टर को पॉलिटिशियन बनाओगे तो यही होगा। मतलब विजय थालापति ने तो पूरी स्टेट को अपनी किसी फिल्म का सेट समझ लिया है। विजय ने करप्शन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए जनता से कहा कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या पॉलिटिशियन रिश्वत मांगे तो डरना नहीं है, साफ मना कर देना है और डंके की चोट पर मेरा नाम ले लेना। वुमेन सेफ्टी के लिए स्पेशल ऑल वुमेन पुलिस पेट्रोल फोर्स लॉन्च की है जिसका नाम सिंगापुर रखा है। और अभी इसी बीच एक वीडियो भी काफी वायरल हुई जिसमें एक लड़की रात को अकेले घर जा रही थी और पुलिस ऑफिसर्स उसे पीछे से एस्कॉर्ट कर रहे थे। और यही नहीं, अब तमिलनाडु के किसी भी रोड या फुटपाथ पर कोई भी नेता, चाहे वो सीएम ही क्यों ना हो, अपना बैनर होर्डिंग या कटआउट नहीं लगा सकता। बताओ ऐसे कोई करता है? अब नेताजी अपनी शक्ल कहाँ दिखाएंगे? इसके साथ ही उनका सबसे शानदार कदम ये है कि नेता के बच्चे प्राइवेट छोड़कर सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे ताकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड सुधरे। इसरो साइंटिस्ट को तमिलनाडु के स्कूल ले।
16: मैं जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ एक सॉन्ग शूट करने के लिए और मेरे साथ आ रही है
17: दीदी और दीदी के साथ आ रही सोना सपोर्ट के लिए। बाबा छत्तीसगढ़ जा रहे हैं गाना बनाने के लिए।
18: सुख से रहो। अच्छा है भैया।
17: चलो चलो चलो, टाइम हो गया, ट्रेन है 10:30 की। चलो चलो चलो चलो चलो
19: चलो।
17: मम्मी बाय बाय, पापा को भी बाय बाय बोलना।
16: हम लोग भूल गए घर पे एक बैग, वो भी काय का मेकअप के सामान का।
17: सोना मेकअप भूलेगी काय का?
19: मेकअप था, जूते चप्पल थे, कोलगेट ब्रश था यार, और मेरा तो बहुत सारा सामान था।
17: चलो कोई नहीं, ले लेंगे ना, रायपुर में ले लेंगे, अभी ट्रेन आ जाएंगी। क्या बोल रहा है प्रभात? क्या बोल रहा है
19: प्रभात? 3 बजे की ट्रेन है उनकी।
20: वही तो बोला, 1 बजे 1:30 बजे निकलना है उनको।
17: नहीं हो सकता
20: कुछ। चलो मेरी तो बस में जा रहा हूँ, बोल रहा था।
17: ठीक है, बाय बाय।
20: फोन करके।
19: लड़कियां जब ट्रिप पे जाती है और अपने भाई को क्यों लेके जाती है पता है?
21: इसलिए।
19: चलो
20: कुली बना दिया भैया मेरे को कुली।
19: वैसे हम लोग ट्रिप पे नहीं जा रहे, यही हमारे को अपने काम में घसीट रहा है। बता, ट्रिप के नाम पे नहीं बोलता है, और कहीं जाने का ना तो चलो, मतलब काम से सूट पे।
22: खावे यार, महीने खाती।
23: इतना सारा पानी, जब तक बरसात नहीं जानी तब तक किसान नहीं होता, और पानी तो अभी भी आ रहा है।
17: हम लोग पहुंच गए हैं दुर्ग और हमको लेने के लिए आए हैं सेमेस भैया, ये है ओनर MS म्यूजिक के। चलो, भूख लगी क्या?
22: हो गया हमारा।
17: गाइस हम लोग अभी यहाँ से खा के आए हैं। तो गाइस मेरे साथ दो बॉडी गार्ड है मेरे दोनों साइड, ये देखो। चलो चलो जल्दी चलो, लेकिन संभालता मैं हूँ इनको। चलो बैठो। हम लोग पहुंच गए हैं दुर्ग और आज रुके हैं एक भैया के घर पे। और गाइस मैं
24: तो अगले 5 मिनट में मैं ये सारे टमाटर खरीद लूंगा, लेकिन अगर भाई चाहे तो भाई साहब कितने टमाटर होंगे आपके पास? ये
25: 80 किलो।
24: लगभग कितने पैसों के हो गए?
25: 2000 के।
24: पूरा कैलकुलेट करके बैठा है। अगर भाई साहब आपने बता दिया कितने किलो टमाटर है तो मैं ये आपके ये सारे टमाटर खरीद लूंगा अभी के अभी। कितने होंगे?
25: 3.5 किलो।
24: ओके, ये मैंने रख दिया भाई। 4 किलो 800 ग्राम। एक चांस और दूं तो अभी इन टमाटरों का वेट है इतना। कितना होगा?
25: 3 किलो।
24: गड़बड़ हुई, लास्ट चांस है, देखो एक बार और सोच लो
25: ना। 3 किलो।
24: चलो भाई बोल रहा है पूरा 3 किलो। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। ओके और ये हुए 2 किलो 900 ग्राम।
1: अरे भाई यार
2: कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हैं।
3: 100 ग्राम की वाई हो तो
24: 50 ग्राम का बोला था मैंने। तो भाई मैंने ये 2 टमाटर निकाल लिए थे पहले ही, क्योंकि मैं हूँ एक नंबर का चोर,
2: सबको पता है।
24: वो 75 हो जाएगा। और ये हो गया भाई 3 किलो 55 ग्राम। क्या बात है, आप जीत गए, लाओ 2000 रूपए। ये 2000 रूपए और टमाटर भी आपके हुए। बाय बाय भाई रे, 1 किलो सब्जी खतर तो दे दे घर, क्योंकि मैं हूँ एक नंबर का चोर। तो अगले 5 मिनट में मैं ये सारे टमाटर,
0: साला ये बरसात का सीजन भी बड़ा खराब है, पूरा पीच पीच लगता है, दिन भर झिमुर झिमुर पानी, झिमुर झिमुर पानी, बड़ा
3: भाव। कैसा लग रहा है
0: वो तो दिक्कत नहीं रही है बे,
3: वो तो अंदर पहनी है ना।
0: अबे नहीं नहीं नहीं नहीं, जा बाहर पहन। क्या
3: भाव अब कैसी लग रही है?
0: हाँ मस्त लग रही है यार, एक बार ऐसा करके देख, कंफर्टेबल है कि नहीं?
3: कंफर्टेबल है, एक नंबर, मजा आ गया।
0: हाँ इसको डन करती है। प्रभात को तो खुश कर दिया मैंने, संतुष्ट।
6: तेरी गैल गैल चलूं ते।
21: आज है रामटेक में एक सम्मान समारोह, हमको भी वहाँ पे बुलाया है, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा सेविंग वगैरह करके आता हूँ। बेटा के साथ हमको निकलना था 11 बजे और 11:30 तो मेरे को यहीं पे बच गया। अब मालूम नहीं घर जाने के बाद कितनी गालियां खाता हूँ। निकल रहे हम लोग रामटेक, हो गए सब लोग रेडी। कितने सारे लोग है वे? अब अपू आस्था मैडम बिहारी कैसा?
25: सब बढ़िया।
21: चलो चिंचू भाई,
26: गाइस पहुंच गए।
27: आज क्रिएटर कबड्डी खेलने जाना है।
28: सुनो बे, अपन जा रहे हैं हवाई जहाज से मुंबई, तुम दोनों भी मेरे साथ में आ रहे हो? वहाँ पर है क्रिएटर कबड्डी लीग, तो वहाँ पर खेलने के लिए बुलाया है मेरे को।
29: वहाँ पर तो टीवी पे भी दिखेगा।
28: आओ बे।
29: कौन से चैनल पे?
28: जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स।
29: मैं डाउनलोड कर लेता फिर देख लूंगा।
28: जल्दी डाउनलोड कर अभी के अभी।
29: चलो चलो अपने फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और सुनो बे, पहली बार जा रहे हैं, किसी को लगना नहीं चाहिए कि पहली बार जा रहे हैं ये लोग।
28: आओ,
29: ये तो सीट बेल्ट फंस गया।
28: अबे साले उसको वैसा नहीं निकालते, इसको पूरा ऊपर करते फिर निकलता है वो।
29: तू इधर बैठ जाना, मेरे को खिड़की के पास बैठने दे, मेरे को भी बाहर का नजारा देखना है।
28: अबे साले तेरे को हवाई जहाज में बैठा ला वो बहुत है, साला खिड़की के पास बैठेगा, हाथ दे तो उंगली तोड़ते हो साले। बैठ बे।
29: बहुत जोर से सुस्त लग गए।
28: अबे साले रुक नहीं सकता क्या 1 घंटा? और घर से करके नहीं आ सकता था क्या? अब यहाँ कहाँ जाएगा भाई? रोक के रख थोड़ा सा, कंट्रोल कर।

0: मिला तू।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष पुष्पतोड़े
2: और मैं लावण्या दास मानिकपुरी।
1: हमारा एक नया सॉन्ग आने वाला है, ब्यूटीफुल नोनी,
2: ओनली ऑन MS म्यूजिक 8 फरवरी को। तो इंतजार कीजिए 8 फरवरी का और देखना ना भूलिए।

0: नमस्कार दोस्तों,
1: ये वीडियो मैं फिर से लेके आ चुका हूँ। या तो आप 100 रुपए का फ्री पेट्रोल ले सकते हो या इन कूपन्स में से कोई एक कूपन चुन सकते हो। इनके अंदर टैंक फुल 500 रुपए बहुत सारे हैं और खाली भी है। नमस्कार भाई साहब, या तो आप 100 रुपए फ्री पेट्रोल डलवा सकते हो या फिर इन कूपन्स में से कोई भी एक कूपन चुन सकते हो। इनमें खाली भी है, टैंक फुल भी है,
2: पर लेंगे भाई।
1: बताओ कौन सा लोगे? रेड वाला लिया है भाई इस बार। और 300 रुपए का तेल आया है।
0: तेल डलवाओगे या कैश लोगे?
1: कैश दे दूं। ये पकड़ो आपके 300 रुपए।
2: ठीक है भाई जी।
1: ओके भाई साहब, अभी दोबारा से किसी और को रुकवाते हैं और देखते हैं उसके कितना आएगा। या तो आप मेरे से 100 रुपए फ्री ले सकते हो या फिर इन कूपन्स में से कोई एक चुन सकते हो। इनमें टैंक फुल भी है, 500 रुपए का तेल है, जितना भी आएगा उतने का तेल डलवाऊंगा। खाली भी है बट
2: ऊपर ही
1: लोगे। 100 रुपए ले लो, देख लो खाली आ जाएगा। ये वाला और इसके अंदर है भाई साहब 200 रुपए। चलो 100 का फायदा हो गया आपके। आ जाओ, ये पकड़ो आपके 200 रुपए। अच्छा आपके नहीं है क्या? ये वीडियो मैं फिर से लेके आ चुका हूँ। या तो आप 100 कितने रुपए के लिए कोई अपने पहने हुए कपड़े बेच सकता है भरी मार्केट में? मैं 1000 रुपए से शुरू करने वाला हूँ।
3: क्या लग रहा है बेच देगा कपड़े 1000 रुपए में?
4: अरे भाई क्या बताऊँ मैं।
1: क्या आप 1000 रुपए के लिए अपने कपड़े बेच सकते हो?
5: 1000 तो महंगे हो।
1: कितने में बेचोगे?
6: बहुत सारे पैसे।
1: 1100 रुपए के लिए अपने कपड़े बेच सकते हो? क्या फ्री में अपने कपड़े बेच सकता है? तू बेच सकता है, रहने दे।
6: सही कह रहे हो भाई।
1: 1300 रुपए के लिए अपने पहने हुए कपड़े बेच सकते हो? भाई साहब कच्चा नहीं खरीदूंगा। 1500 रुपए के लिए अपने पहने हुए कपड़े बेच सकते हो? 1600-1700 रुपए।
7: मैं तो अमरुद बेचने आऊं भाई, मेरे तक को छूट कर आजा वाला भाई।
6: अरे साले
1: 1800 रुपए दूंगा, कपड़े उतार के मेरे को देनी है।
5: ले ले
1: आओ, तो इधर आ जाओ।
0: भाई को कोने में लेके चलते हैं।
1: ये भाई साहब ला भाई, ये आ गई है भाई पेंट भी। 900 के 1800 रुपए हो गए हैं। ये लो भाई। कितने के थे वैसे ये? 1800 रुपए हुए आपके।
8: भाई एक बात बताऊं, इतना कच्चा बांट रहे हैं।
1: कितने रुपए की?
9: चलो
0: तू हंसे मत बे, तू पीछे हंस ले।
9: चलो
0: चलो
9: बे, अच्छी तो होती ना पहनने में?
0: अरे बहुत अच्छी होती है, मैं खुद यूज करता हूँ इसको। मेरे ग्राहक साले ऐसे से खराब करेंगे तू? भैया बहुत अच्छी होती है, आज मैंने नहीं नहाया हूँ इसलिए नहीं पहना।
9: चलो
0: तू हंस।

0: रुको जरा,
1: गए थे नहाने और मेरा हो गया भारी नुकसान। क्या हुआ पता है? मेरा फोन गिर गया स्कूटी से आते आते, और इसका ये देखो, ये पूरा टूट गया। ये ग्लास नहीं है, ये जो लगा हुआ था होता है ना कांच, वो कांच टूट गया है। ग्लास तो टूटा ही टूटा, उसके
2: आपको अपने पापा को कॉल करना है और 500 रुपए मंगवाने हैं। ये आपको 3 मिनट में करना है, अगर कर दिया तो मैं दूंगा आपको 500 रुपए।
0: पैसा ही पैसा होगा।
2: चलो मिलाओ फोन, क्या होता है।
3: हेलो, 500 रुपया चाहिए था, कोई सामान लेना तो
4: ले
3: कर दियो ना एक बार। ऑनलाइन कर दियो, एक छोरा दो रहा
4: है,
3: वो सागर है, करे मेरे सागर
4: जोर रहे।
3: एक छोरो है वो फोन करे करो, तो हम डॉक्टर आलो
4: के सामान ले हो रहे।
3: कोई चीज चाहिए थी पापा
4: यार, कोई बता दे मैंने भी।
3: कोई कापी किताब है।
0: क्या बात है सर,
3: करो के
4: है पकड़ना के।
3: हाँ,
2: अंकल ने बोला है किस लिए चाहिए पैसे, तभी भाई ने बोला है कॉपी किताब के लिए, अभी भेज रहे हैं, मैंने टाइम ही स्टार्ट नहीं किया था। बट अभी कोई बात नहीं, 2 मिनट और बाकी है भाई के पास, अभी मैं फोन करूँ ना बोलू 5 लाख भेजने हैं, कभी नहीं भेजेंगे, सिर्फ 150 से ऊपर बात नहीं करते हैं।
5: 150 रुपया देगा
2: भाई, 1 मिनट 20 सेकंड, मैंने लेट स्टार्ट किया टाइमर, वो मेरी गलती है इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। आपका फोन स्लो है क्या? नहीं, आपका साबुन स्लो है क्या? 1 मिनट 10 सेकंड हो रहे हैं, अभी तक पैसे नहीं आए हैं।
6: अरे कहाँ फंस गए भाई साहब, QR कोड देख रहे हो क्या?
2: टाइम निकलता जा रहा है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। दोबारा फोन आ गया।
3: हेलो,
4: नंबर शो है, कौन कर रहा है?
3: स्कैनर भेजो, रुको कट ले यार
2: भाई साहब, 2 मिनट सिर्फ 30 सेकंड है, मुश्किल लग रहा है मेरे को। स्कैनर तो मिल गया भाई, सिर्फ 20 सेकंड हो रहे हैं, टाइम मैंने पहले भी गलत कर दिया था, मतलब स्टार्ट नहीं किया था। मुश्किल है भाई साहब, 15 सेकंड। अरे भाई साहब टाइम खत्म हो चुका है भैया, फिर भी मैं लास्ट 20 सेकंड दे रहा हूँ। 5, 2, 1, टाइम खत्म। फोटो आ गई है, सॉरी ब्रदर, बट अभी 500 रुपए तो आ गए पापा वाले।
5: पैसा कहाँ है मेरा?
2: आपको अपने पापा को

0: चलो बे आज अपने को चिप्स बनाना है। ये ले बे तू इससे चिप्स बनाना। अबे आओ ना बे। ये ले बे तू इससे आलू चिप्स बनाना। चुप चुप चुप चुप चुप। और ये ले बे तू इससे आलू छिल छिल के इसको देना। चलो ले काम चालू करो जल्दी। बेजा धीरे धीरे काम करते हो बे साला। 12 बज गए अब कितनी धूप हो गई है। अब धूप से तू पूरा काला खा रहा है साला। सूखने भी नहीं दे रहा उनको। चलो सूखने के बाद खाना ना कितना खाते हो तो नीचे से झुक के आना बे नहीं तो लटकोगे वहां पे। चलो ले चिप्स ऐसा एक एक करके इस पे पूरा बिछाना है ठीक है ताकि सूख जाए अच्छे से एकदम। अबे साले तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या गोबर। तेरे को बोल रहा हूँ एक एक रख करके तो फेंक रहा है वहां पे। चलो बे आज अपने
1: ये है मेरे पास 10 दर्जन केले। जो भी सबसे ज्यादा केले खाएगा उसको मैं देने वाला हूँ इतना पेट्रोल कि उसकी बाइक की टंकी हो जाएगी फुल। तो अभी इधर खड़े हैं बहुत सारे लोग। कौन कौन आना चाहेगा? तो चारों भाई आ चुके हैं। जल्दी से शुरू हो जाओ। जो भी केला खाओ अपने पैरों के नीचे छिलका रख लो ताकि लास्ट में गिनती कर सके। केले आम जैसे लग रहे हैं?
2: हाँ लग रहे हैं।
1: केले मीठे है ना?
2: मीठा है।
1: केले लंबे है ना?
2: लंबे।
1: केले केले जैसी है ना? कितने खा गए आप?
3: होने बाद में ना।
1: क्या बोल रहे हो भाई?
2: आज रोटी उन खाई
1: अंदर है। फिर भाई साहब आपके पास सिर्फ 10 मिनट और बचे हैं ठीक है। अभी देख रहे हैं भाई किसकी टंकी होने वाली है फुल।
2: आपकी हो जाएगी?
4: पता नहीं लग रहे हैं तो बाद में बताएंगे।
1: आपकी तो करूंगा भी नहीं फुल, बाइक की करूंगा। यो न्यू लगे मिर्च खा है केला खा है पसीनो हाल लग रहा है।
5: अरे चुप रे।
1: केला टाइट तो नहीं?
4: टाइट है यार।
1: टाइट है। ये देखो भाई साहब कितने खा गए। 15 केले हो चुके हैं।
6: मेरे को डर ये लग रहा है केले खत्म ना हो जाए। मन न्यू लगा लास्ट में बचा को नहीं। एक पहले ठा लियो।
7: सही खेल गया।
8: बदल दोगे?
9: हाँ बदल दो।
1: ये भाई बोल रहा है मेरी जगह ये खाएगा।
10: अरे ब्रो ये नहीं होता।
11: ये तो अगला आदमी है।
1: इतने सारे केले कोई खा सकता है? थोड़ी देर पहले टेबल भरी हुई थी। ये भाई साहब बोल रहे हैं अपना हो चुका है तो कोई बात नहीं आप खड़े हो सकते हो एक साइड में। ये भाई साहब भी स्लो हो गए हैं और ये भी स्लो हो गए हैं। ये लगे हुए हैं खतरनाक तरीके से। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट और बचे हैं। जब से देख रहा हूँ ना भाई वैसे ही लपेट रहा है जैसे सुबह शुरू हुआ था। नहीं सॉरी 15 मिनट पहले। 1 मिनट और आपके पास। अभी आप कंपटीशन में आगे पीछे हो सकते हो। एक साथ 4-5 केले खा जाओ। 15 सेकंड और हैं। 15 सेकंड में फिनिश होगा तभी माना जाएगा भाई। गिनो भाई अपने अपने 7, 8, 9। भाई के हुए हैं 19 केले। इस भाई के भी 19 केले हुए हैं और सबसे पहले खाया था इसने।
12: उरो भाइयों देख
1: इस भाई के हुए 24 केले।
12: ये देखो जरा
13: रोटी कौन पावे शाम में।
1: इस भाई के हुए 28 केले। तो अपनी बाइक लाओ भाई फटाफट। ये भाई था दूसरे नंबर पे तो 500 रूपए का इसको भी तेल डलवा के देंगे। ये 500 रूपए आपके। मैंने इनकी टंकी भी फुल कर दी, इनकी बाइक की भी टंकी फुल कर दी। मेरे जैसा इंसान कहाँ मिलेगा। ये है मेरे पास
14: गाइस ये टिकट देख रहे हो जनरल की है जनरल की। और हम लोग पता है कहाँ पे बैठे है तो फर्स्ट एसी में। ये देखो
15: फर्स्ट एसी नहीं है ये एच है जो कंपार्टमेंट रहते ना वो वाला
14: उसी को।
16: पहली बार मोबाइल ऊपर की जेब में रख दिया।
15: साला मोबाइल गया कहा? कोई चोरी तो नहीं हो गया?
0: दीदी पुलिस को फोन लगा तो।
14: क्यों क्या हो गया?
0: अरे लगा ना यार तू मत लगा मत लगा मत लगा।
14: क्यों?
0: अरे कुछ नहीं।
14: क्या हो गया बता ना।
0: अरे नहीं यार
14: कोई दिक्कत तो नहीं हो गई?
0: नहीं कोई दिक्कत नहीं है।
16: पहली बार मोबाइल
17: गाइस अभी जस्ट मेरा सॉन्ग रिलीज हुआ है वो ब्यूटीफुल नोनी जो था ना वो वाला। ये देखो मैं तो देख रहा हूँ पूरे लोग ये मम्मी पापा दीदी और ये छोटे भाई लोग सब लोग हैं। संतोष तो सोया है अभी उसने नहीं दिखा तो जल्दी से जाओ और देखो भाई मजा आएगा। ये देखो मेरा पहला गाना मेरा डांस दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखो गाइस जल्दी जाओ देखो और कमेंट करना कैसा लगा मजा आएगी यार देखो जल्दी गाइस। अभी
1: 5 मिनट में अगर आपने ये 2000 रूपए खर्च कर दिए तो जो भी खरीदोगे वो आपका लेकिन 1 रुपया बचना नहीं चाहिए। आपको 5 मिनट में ये 2000 रूपए खर्च करने हैं। अगर कर दिए तो जो भी खरीदोगे वो आपका लेकिन 1 भी रुपए बच गया तो जो भी खरीदोगे वो मेरा।
0: 5 मिनट होंगे आपके पास
1: करोगे?
14: हाँ ठीक है।
1: 3, 2, 1 स्टार्ट। टाइम हो चुका आपका शुरू। तेरी को फुल स्पीड से जा रही है भाई दिखी नहीं रही है। 1 मिनट 1 मिनट
2: आते ही काजू किशमिश बादाम 35 सेकंड हुए हैं अभी।
3: डाइट मेरी सही।
2: ये लो काजू बादाम ही ले रहे हो।
5: अरियो अच्छा ठीक अरियो
7: 1200 रुपए किलो।
5: ये दोनों कर दो, एक मेरा दे, कर दो बिल कर दो।
3: डाइट
2: इतनी खुशी।
8: अच्छा ये 1,000 रुपए के हैं।
2: ठीक है ओके।
8: 1.5 मिनट हुआ भाई, ये तो 2,000 की यही ले रहे हो।
2: वाह लड़कियों के पास में नहीं चाहिए भाई शॉपिंग के मामले में।
5: मैं को मेरा समर कैंप नहीं निकलेगा
8: तो बादाम खा के निकलेगा।
5: मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ।
8: भाई 2,000 में 2 किलो बादाम कंटेंट खत्म।
2: 2,000 का बिल आ गया मेरे हाथ में।
9: चल रहे बाजले।
2: मैंने सोचा ड्रेस लेगी देखेगी।
10: ये पक्का सपना देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ।
2: 5 मिनट में अगर आपने ये 2,000 रुपए खर्च कर दिए तो जो
11: करे खर्च वो खुद की कमाई ने रखा।
13: ए बाजी जो मेरा आदर हो दे तेरा भी।
11: करे खर्च वो खुद की कमाई ने रखा।
2: इस डाइस को आपको 2 बार घुमाना है। 2 बार घुमाने पर जितना भी पेट्रोल आया, जैसे 4 आया और 2 आया तो मैं 6 लीटर पेट्रोल डलवा दूंगा। लेकिन 1 बार भी गेम ओवर आया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक ट्विस्ट और भी है, अगर टैंक फुल 2 बार आ गया तो जितना भी पेट्रोल डलेगा वो भी डलवाऊंगा प्लस और पैसे और दूंगा उसके। मतलब डबल हो गए ना, टैंक फुल भी हो गया और फिर पैसे भी।
18: पैसा ही पैसा हो गया।
2: मेरी किस्मत ऐसी है हर बार ये आएगा और मेरा कंटेंट वहीं खत्म हो जाएगा। हाँ ट्रैक्टर वाले और रेस दे ली इसकी।
19: अपना काम कर रहा
2: तो भाई प्लीज ये ना आए पहली राउंड में। क्या माइलेज देती है ये गाड़ी?
19: ये बहुत माइलेज देती है।
2: पेट्रोल फुल करवाऊं?
19: तू पागल है क्या?
2: इस डाइस को आपको 2 बार घुमाना है, जितना भी पेट्रोल आया वो मैं आपको डलवाऊंगा। धड़कने तेज हो रही है मेरी भी और भाई की भी। चलो पहली बार में हाँ नीचे गिरा देना। ओके अरे नीचे गिराना है महात्मा गांधी।
5: मुझे क्यों तोड़ा?
2: यस ओ 2 लीटर पहले राउंड में 2 लीटर आया है। अभी सेकंड राउंड देखते हैं भाई। सेकंड राउंड में अगर टैंक फुल आ गया तो ओ टैंक फुल।
20: बड़ा समझाया तेनू समझ ना आया।
2: मेरा कंटेंट तो यही खत्म होता है हर बार। कितने का डलवाता है डेली?
21: 30 रुपए का
2: भाई साहब। 30 रुपए का?
21: 80 रुपए का?
2: 80 रुपए का। मतलब आज टैंक फुल करवा के कैसा लग रहा है आपको?
21: बढ़िया
2: बढ़िया सारा लगे कि मैं और लाइन बोल रहे हैं।
21: बढ़िया फीलिंग हुई।
2: स्वाद आ गए।
21: स्वाद आ गए तुम एक नंबर के।
2: या तो मैं कही इज्जत बोलियो। 1,000 तो आपके हो गए प्लस 2 लीटर और भी जीता था आपने। ये 200 रुपए आपके कैश जो जीते थे। इस डाइस को आपको 2 बार।
22: आज मैंने लगा लिया उस सब्जी भाजी का दुकान। बहुत सारे लोग बेरोजगार रहते हैं और इधर उधर नौकरी की तलाश करते हैं। तो आज मैं देखने वाला हूँ कि सब्जी का दुकान लगा के हम एक दिन में कितने रुपए कमा सकते हैं। तो मैंने ले लिया इतनी सारी सब्जियाँ। मेरे पास है प्याज आलू टमाटर मटर भट्टा मिर्ची गोभी शिमला मिर्ची और चना।
23: ये सारा सामान लेने के लिए सुबह सुबह मैं निकल गया मंडी। यहाँ पे हमको सब्जी भाजी का थोक में मिलता है वो भी कम दाम में। पूरा सामान लिए और हमने लगा दिए मार्केट में दुकान।
22: ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया है एक पजल गेम। 1 रुपए का 10 रुपया 10 का 100। क्या करना है? ये सेब दिख रहा है, इस पे अपने को 10 का सिक्का रखना है। अगर ये इस सेब पे टीका रहता है तो उसको मिलेगा 10 का 100 रुपए। हमने लिए है पूरा 3800 रुपए का सामान और अब हम देखने वाले है कि 3800 रुपए के सामान से कितने रुपए का फायदा होता है। बहुत सारे लोगों को गांव में कमाई का साधन नहीं मिलता तो वो शहर की ओर पलायन करते हैं। तो देखते हैं आज कितना फायदा होता है। फिर तुम मत जाना, तुम गांव में एक ठेला लगाना सब्जी का। शुरुआत में हमारी सब्जियां तो कम बिक रही है लेकिन ये गेम ज्यादा चल रहा है।
23: मेरे को तो लगा था कि हमारी दुकान चलेगी ही नहीं लेकिन धीरे धीरे लोग आना चालू हुए।
22: मार्केट का अभी सबसे एंडिंग वाला समय आ गया है जहाँ पे पूरा सामान हो गया है सस्ता। तो हमने भी पूरा सस्ता कर दिए, जिस रेट में आया है ना हमको उस रेट में बेचना पड़ रहा है।
23: जो डर था वही हुआ, आधे से ज्यादा सामान बच गया।
22: तो अब देखते हैं कितने रुपए हुए हमारे पास।
2: 4, 5, 6
22: 150 रुपए का फायदा हुआ है और ये इतना सारा सामान बचा है। तो ये सामान कम से कम 1500 का तो होगा। आप लोग भी इधर उधर नौकरी।
3: थैंक यू भैया।
24: दोस्तों पहले